ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर घर घर की आवाज रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। पेश है कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 2। आज के हमारे मेहमान है श्रीमती हरजीत कौर लांबा, प्रस्तुतकर्ता आजय किरने।
2: कार्यक्रम घर परिवार के आज के अंक में मैं किरनी सभी सुनने वालों का स्वागत करती हूं और हरजीत लांबा जी आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: सबसे पहले सभी सुनने वाले श्रोता को मेरा सत श्री अकाल नमस्कार और किरनी जी आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका आप इस कार्यक्रम में आए। नारी ही शक्ति है नर की, नारी ही शोभा है घर की, जो उसे उचित सम्मान मिले तो घर में खुशियों के फूल के लिए। एक नारी अकेले ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। आप समझ ही गए होंगे कि आज चर्चा का विषय है नारी। अब आपसे मैं पूछना चाहती हूँ हरजीत जी, आप बेटियों यानी नारी की व्याख्या किन शब्दों में करोगे?
3: देखो, जब बेटी का जन्म होता है तो परिवार में बहुत खुशी का माहौल होता है। बेटी के बिना कोई परिवार पूरा नहीं होता। बहुत खुशनसीब हैं वो माता पिता जिनके परिवार में बेटी होती है। आपकी बेटी हमेशा आपकी स्थिति को समझती है। अच्छे बुरे का बेटियां परिवार के लिए उपहार की तरह होती हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा एक बेटी चाहते हैं ताकि उनका परिवार पूरा हो सके। कई लोग बेटी को बोझ समझते हैं लेकिन ये सच नहीं है। बेटियां उनके लिए वरदान होती हैं। यही बेटी नारी की भूमिका निभाती है।
2: जी हाँ, जो बेटी है वो घर को स्वर्ग बनाती है। हर एक चाहता है कि उसकी एक बेटी हो। बेटी समाज का मूल आधार है तथा ईश्वर द्वारा बनाई गई सबसे खूबसूरत और अमूल्य रचना है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, नारी समाज में अनेक रिश्ते निभाती है, चाहे वो बहन का हो, माँ का हो, पत्नी का हो, दादी का हो, आपका क्या मानना है? कृपया विस्तार में बताइए।
3: परिवार में बेटी और बेटे का समान रूप से महत्व होता है। वर्तमान समाज में भेदभाव को मिटाकर बेटियों को महत्व देना चाहिए। बेटियां ही घर की संचालन शक्ति होती हैं। माँ, बहन एवं पत्नी के रूप में उनका सर्वांग जीवन त्याग एवं सेवा की लंबी गाथा है, उसका बहुत वर्णन है।
2: जी हाँ, एक नारी जो है बहन

0: जो वर्तमान की नारी है वो आर्थिक की दृष्टि से आजाद हो, शिक्षित हो, पुरुष की दास्ता से मुक्त हो, दोनों यानी कि एक पुरुष और एक महिला एक दूसरे का सम्मान करते हुए परिवार और समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। हाँ जी,
1: देखो किरणी जी, हमारे समाज में जागरूकता आई है, भ्रूण हत्या अब कम हुई है, गवर्नमेंट ने भी कानून जो है बना दिए हैं, बहुत सख्त कानून बनाए हैं कि बेटियों को जन्म से पहले आप भ्रूण हत्या नहीं कर सकते हैं, और रेशों में भी लड़कियां जो हैं वो लड़कों के बराबर हो गई हैं। अभी मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ। बेटी बोझ नहीं सम्मान है, घर की प्यारी सी मुस्कान है, आसमान की बुलंदियों को छूने के लिए तैयार है।
0: जी हाँ, इसीलिए हम सबको एक नारी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि नारी से ही जीवन है। जी, आपकी कविता से मुझे भी दो लाइनें याद आ गई। मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंधी थी दुनिया सारी, हर पथ को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। अब हम आपकी पसंद का एक गाना अपने श्रोताओं को सुनाएंगे। आप बताओ आपकी पसंद का गाना कौन सा है?
1: उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पारे कराते। किरण जी, मुझे ये बहुत पसंद है।
0: चलो, आपकी पसंद का ये गाना हो जाए। जी हाँ, ये गाना बहुत अच्छा है, और इसकी जो पहली दो लाइनें हैं जो कश्मीरी में है वो मुझे भी बहुत पसंद है। जैसे कि भाष से खानो मजगूर दुमे रक्षत मैंने बजानो। अब सब सुनने वालों को और आपको हम ये वाला गाना सुनाते हैं।
1: वाह, खूब।

0: बहुत ही मनमोहक गाना था, हमने और लिस्नर्स ने सुना। आप एक हाउसवाइफ भी हैं, आज के मौसम के हिसाब से आप कौन सी रेसिपी श्रोताओं को आज बताने वाले हैं?
1: आज मैं आपको फ्रूट क्रीम बनाना सिखाऊंगी। ठंडा हम खाने को भी मन करता है और पौष्टिक भी है। आजकल किरणी जी बच्चे जो हैं वो फल फ्रूट कुछ चीजें नहीं खाते हैं, इसलिए उनको खिलाना पड़ता है। तो छोटी सी रेसिपी है, उसमें घर में फ्रूट पड़े रहते हैं, जैसे सेब, अनार, केला, कोई भी आप ले सकते हो। उनको छोटे छोटे काट कर बाउल में डाल लो, घर की मलाई पड़ी होती है उसको फेंट लो, अगर नहीं है करीम ले आओ, उसमें शहद मिलाकर उनको मिक्स करके आप बच्चों को खिलाओ, खुद खाओ, ये व्रत में भी खा सकते हो आप।
0: जी हाँ, बहुत ही बढ़िया रेसिपी और कम समय में बनने वाली, मैं भी आज ही ट्राई करूंगी। अब आपकी पसंद का एक और गाना हो जाए।
1: तो क्यों ना वो लगाया जाए, अपने पुराने टाइम का गाना, ओ बाबुल प्यारे।
0: जी हाँ, आपके लिए और अपने श्रोताओं के लिए पेश है बाबुल प्यारे।

0: You are listening 90.0 FM, Radio with a Star, Hum Safar Zindagi Ka.
1: आप कोई घरेलू नुस्खा बताएं जो सबके लिए कारगर हो।
2: हाँ जी किरणी जी, आजकल बारिश का मौसम है, तो कुछ ऐसा बताया जाए कि स्किन के लिए, खुजली के लिए जैसे नारियल तेल में थोड़ा सा कपूर मिला के लगाएं कि उससे आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और ये आपके लिए फायदेमंद भी होगा।
1: जी हाँ, हमारे श्रोताओं को कुछ तो इससे फायदा मिलेगा। मैं भी एक घरेलू नुस्खा आपके साथ और अपने श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो है हल्दी। हल्दी तो हर एक किचन में मिलती है। अगर शरीर के किसी हिस्से में चोट लगे तो गर्म दूध में हल्की फुल्की हल्दी डालकर पिए। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है जो मसल्स में आई सूजन में राहत दिलाती है। हल्दी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट से इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। हमारे ये दोनों घरेलू नुस्खों से शायद हमारे श्रोताओं को कुछ हेल्प मिले।

0: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: प्रोग्राम के अंतिम हिस्से में अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप आज अंबाला कैंट के पहले FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आए हैं, आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए।
2: हमें बहुत खुशी है कि अंबाला कैंट को अपना FM स्टेशन मिला है, जिसके माध्यम से हम सभी अंबाला वासी अपनी बात लोगों तक पहुंचाएंगे और पहुंचा सकते हैं। मेरी दिल से दुआ है कि दिन दुगनी रात चुगनी हो। मैं हमेशा FM सुनती रहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अंबाला में मेरे घर के पास FM खुल जाएगा, कि जिसको मैं बड़े मन से सुनती हूँ। अब
1: हरजीत जी, अब हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है। उम्मीद है श्रोताओं को आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपका शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। अब लास्ट में आपकी पसंद का एक और गाना हो जाए।
2: आओ झूमे गाए मिलके धूम मचाए। आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे आमंत्रित किया। हमारे श्रोतागण को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद जय भारत।
1: आइए, आपको हरजीत जी के पसंदीदा गाने के साथ छोड़े जा रही हूँ और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 2। इसको प्रस्तुत किया आरजे किरने ने। रिकॉर्ड एडिट एवं निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की पेशकश।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

मन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन, सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

नमस्कार, एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। और मैं हूं आपका अपना रेडियो हम सफर रेडियो दोस्त नरेश शर्मा। लघु कथाओं की श्रृंखला में आज और एक नई कहानी लेकर आपके बीच में पेश हुआ हूं, और इस कहानी का शीर्षक है मैं ही कृष्ण मैं ही कंस। एक चित्रकार था, बहुत अद्भुत चित्र बनाता था, लोग उसकी चित्रकारी की बहुत तारीफ करते थे। एक दिन कृष्ण मंदिर के भक्तों ने उससे कृष्ण और कंस का एक चित्र बनाने की इच्छा प्रकट की। चित्रकार तैयार हो गया, आखिर भगवान का काम था ना, पर उसने कुछ शर्तें रख दी। उसने कहा कृष्ण के चित्र के लिए एक नटखट बालक और कंस के लिए एक क्रूर भाव वाला व्यक्ति ला कर दें, मुझे योग्य पात्र चाहिए, अगर वो मिल जाए तो मैं आसानी से चित्र बना दूंगा। भक्त एक सुंदर से बालक को ले आए। चित्रकार ने उस बालक को सामने बिठाकर बाल कृष्ण का एक सुंदर सा चित्र बनाया। अब बारी थी कंस की, पर क्रूर स्वभाव वाले व्यक्ति को ढूंढना बड़ा मुश्किल था। जो व्यक्ति कृष्ण मंदिर वालों को पसंद आता वो चित्रकार को पसंद नहीं आता, उसे वो भाव ही नहीं मिल रहे थे। वक्त गुजरता गया, काफी साल बीत गए, आखिरकार थक हार कर ना सालों बाद वो जेल में चित्रकार को ले गए, जहां उम्र कैद काट रहे अपराधी थे। उन अपराधियों में से एक को चित्रकार ने पसंद किया और उसे सामने बैठाकर उसने कंस का एक चित्र बनाया। कृष्ण और कंस की वो तस्वीर आज सालों बाद पूरी हुई। कृष्ण मंदिर के भक्त वो तस्वीर देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उस अपराधी ने भी उस तस्वीर को देखने की इच्छा प्रकट की। उस अपराधी ने जो वो तस्वीर देखी ना, वो फूट फूट कर रोने लगा। सभी हैरान हो गए कि ये क्या हुआ। चित्रकार ने उससे इसका कारण पूछा। अपराधी बोला, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं ही वो बच्चा हूं जिसे सालों पहले आपने बाल कृष्ण के चित्र के लिए पसंद किया था, मेरे कुकर्मों से आज मैं कंस बन गया। इस तस्वीर में मैं ही कृष्ण हूं मैं ही कंस हूं। दोस्तों, हमारे कर्म ही हमें अच्छा और बुरा इंसान बनाते हैं। आप तो विधाता की बनाई हुई एक वो तस्वीर हो जो जिस संग में रहेगी ना, वैसा ही रंग उसके ऊपर चढ़ जाएगा। अच्छे लोगों की संगत करिए, अच्छी सोच बनेगी, और अच्छी सोच यानी अच्छे विचार, अच्छे विचार यानी अच्छे कर्म, अच्छे कर्म यानी अच्छे परिणाम। तो अच्छे परिणामों के लिए सदैव प्रसन्न रहिए, क्योंकि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।

मेरे शब्दों में तुम्हारे नाम की दीवानगी हमेशा महफूज रहती, जो तुम मेरी ढलती उम्र को अपनी पनाह में लेते, मेरे गुनाहों को अपने आंचल में छिपा लेते और मेरी दर्द को अपना दर्द समझते, मेरी परेशानी में मेरे हम कदम साथ साथ चलते, मेरे सफर के आखिरी पड़ाव तक जहां से हमारे तुम्हारे बीच पनपे एक नए रिश्ते की पहचान हो।

तेरे हुस्न की, तेरी पाकिजगी की, तेरे रिश्तों की, तेरी मासूमियत की। कोई बात चले तुम्हारे ख्वाबों की, तुम्हारी इबादत की, वो बारिशों में भीगने की, वो तपती दिल मिलाती धूप में बेपनाह इंतजार की। कोई बात चले ढलती शामों की, सुरमई रातों की, गुप्त अंधेरों की, तेज रोशनी की। कोई बात चले मंदिरों में पूजा की, मसाजिद में अजां की। कोई बात चले वादियों में खामोशी की, तन्हा पत्थरों की, परिंदों की, इन घटाओं की, फिजाओं की, भटकी रूहों की। कोई बात चले हम दोनों की

ये वो खूबसूरती है जिसे महसूस किया जा सकता है, तज़किरा नहीं। इन नीले आसमानों पर ये बादल के टुकड़े तैर कर तुम्हारे आंचल में पनाह लेते हैं, इसका एहसास है हमें। पर क्या तुम्हारे आंगन के किसी कोने में धूप जन्म लेती है कि नहीं? नहीं, शायद नहीं। इसीलिए इस घर की दर दीवार हमेशा पिघलते रहते हैं और टूटी छत से पानी की कुछ बूंदें जा गिरती हैं तुम्हारी मुस्कुराती तस्वीर पर, जो बरसों से इन तनहा खामोश पत्थरों को अपने हुस्न जमाल से रौनक बख्शती आ रही है।

चलन है, मेरी रास्ते की हर रह गुजर क्या इतनी कठिन है। मांगी थी रोशनी पर अंधेरों ने दामन थाम लिया है। चाहा था फूल खिले मेरे आंगन में, पर कांटों से दोस्ती हो गई। कई बार इस तरह के सिलसिले जारी रहे और हम उफ तक न कर सके। शायद मेरा वादा था जिंदगी से, जो निभाता आ रहा हूं मैं जन्मों जन्मों से, एक उम्मीद के साथ कि तेरा मेरा मिलन

आज ये मन क्यों उदास है? क्या मेरी गली से गुजरना वो अब भूल गई है? आज इन आंखों में ये अश्क क्यों बह रहे हैं? क्या अब भी वो अपनी दुनिया से नाराज है? आज मुझे भीगना अच्छा क्यों नहीं लगता है, जबकि आज की ये बारिशें मेरी दुआओं में शामिल थी। अक्सर तुम्हारे आने की आहट मेरी खामोशी को क्यों सुला देती है? क्यों तुम्हारी यादें आ आकर मुझे रुला देती हैं? क्यों आज यहां इन जमीनों पर अब भी मोहब्बतों का बंटवारा किया जाता है? क्यों अब भी यहां इन बोलते परिंदों की सरेआम बोली लगाई जाती है?

0: देखी है हमने मौसमी पतझड़ बिन मौसमी बहार, क्यों एक आरज़ू हर पहर याद दिलाती है मुझे तुम्हारी यादों के मौसम, जब चांदनी रातों में साथ साथ मिला करते थे। क्यों मैं तुम्हारे एहसास को अक्सर अपनी तन्हाइयों में महसूस करता आया हूं, क्यों तुम मेरे ख्यालों में धुंधली तस्वीर बनकर उतर जाती हो, क्यों मैं अपने घर की दीवारों पर तुम्हें सजाता हूं अपनी वीरानी को आबाद करने के लिए।
1: जहां से मैं बेताबियां लेके
0: आया। ये प्रोग्राम आप सुन रहे थे अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। अब चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्ते।

कल रात एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों में मेरी गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आंख में चौली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे के बाद आया मुझे करार, वो सहला कर मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों हैं खफा एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी। मैंने जिंदगी से पूछा, क्यों इतना दर्द दिया तूने? वो हंसी और बोली, मैं जिंदगी हूं पगले, तुझे जीना सिखा रही थी। सुकून मौसीकी में आप सभी का स्वागत है, और मौसीकी के इस दौर के बीच में आज के सफर में मैं हूं आपका रेडियो दोस्त नरेश शर्मा। ये मान लेना कि आगे क्या होगा, यही तो जिंदगी है। लेकिन जो भी होगा मैं उसके लिए तैयार हूं, क्योंकि उतार चढ़ाव ही तो जिंदगी है। और हां, जिंदगी कभी एक जैसी तो नहीं रहती, कभी रुकती है पल भर को, तो कभी चलना शुरू कर देती है। क्योंकि एक जगह पर खड़ा हुआ तो पानी भी सड़ जाता है, इसी तरह से इंसान की जिंदगी के बीच में कभी खुशी आती है, कभी गम आते हैं। दिन है तो रात भी होती है, अंधेरे हैं तो सुबह के उजाले भी नसीब होते हैं। लेकिन कभी कभी वो दो लोग जो एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले, जीने और मरने की कसमें खाया करते थे, उनके ऊपर ऐसा वक्त भी आता है कि अपनी आवाज, अपनी बात अपने महबूब तक पहुंचाने के लिए उनको नगमों का सहारा लेना पड़ता।

मोहब्बत तो अपने आप में एक सरमाया है, ये सबको नसीब नहीं होती। कुछ ऐसे खास किस्मत वाले होते हैं जिनको ऊपर वाले ने इस खास नेमत से नवाजा होता है। ये दौलत है, मोहब्बत सुकून है, मोहब्बत लक्ष्मी है, और लक्ष्मी से किसे प्यार नहीं होता। यूं ही हर कोई नहीं कहता कि मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी।

और जब किसी भी वजह से दो प्यार करने वाले बिछड़ जाते हैं ना, तो फिर इनका दिल इस दुनिया में तो नहीं लगता, क्योंकि इनकी तो दुनिया ही एक दूसरे के साथ ही होती है। ये तो एक दूसरे से जुदा होकर रहने का सोच भी नहीं सकते। बिछड़ गए तो ये दिल लगेगा नहीं, लगेगा कि लगने लगा है पर लगेगा नहीं, और जो आवाज फिजाओं के बीच में गूंजेगी वो यही होगी, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं।

एक नामुराद बीमारी सी है ये मोहब्बत, फिर भी खींचती है अपनी तरफ और ना चाहते हुए भी आदमी प्यार के समुंदर के बीच में डूबता चला जाता है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो खुद ही ये कह बैठता है कि मैं इस दलदल में क्यों फंसा। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं।

झरने की आवाज, जो पानी की आवाज है ना झरनों के बीच में से आती है, कई बार वो आवाज भी अपने महबूब के पांव में बची हुई पाजेब की झंझनाहट सी महसूस होती है और टप टप टप कर गिरती ये बारिश की बूंदें, ये भी अपने आप में मौसीकी का एक वो अंदाज लेकर चलती हैं जिससे सुकून मिलता है और महबूब अपने दिल की बात अपने दिलबर तक पहुंचाने के लिए आवाज देता है, तुझको पुकारे मेरा प्यार।

कितनी भी आवाज दो, लेकिन दुनिया की रस्म रिवाज बेबस कर ही देती है कि वो आवाज महबूब तक ना पहुंचे। न जाने कौन सी शिकायतों का शिकार हो गए हम, जितना दिल साफ रखा उतने ही गुनहगार हो गए हम। आवाज दे के हमें न तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ।

और जब बहुत यत्न करने के बाद भी मुलाकात नहीं हो पाती तो ऐसा लगता है कि ये दुनिया बेकार है। महबूब के बिना इस दुनिया के बीच में मेरा कोई भी अपना नहीं है। जिंदगी से नफरत सी होने लगती है। 4 दिन की जिंदगी में मैं किससे कतरा के चलूं? खाक हूं मैं, क्या खाक पे इतरा के चलूं? दिल की आवाज सिर्फ इतना ही कह पाती है कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं।

एक फकीर ने जिंदगी की क्या खूब मिसाल दी, मुट्ठी भरी रेत की और हवा में उछाल दी। लेकिन मैं वो अपने जो भेजा वो फूल नहीं, एक खत था, और फूल की शक्ल में दिल के सारे अल्फाज उसमें बयां हो रहे थे। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है।

ये कायनात, ये दुनिया, ये आबो हवा, ये पहाड़ों की खूबसूरत वादियां, ये तैरते हुए बादल, ये अपना अफसाना कहती हुई खूबसूरत हवाएं, कई बार ऐसा मदमस्त माहौल बना देती हैं कि इंसान तो क्या बादलों के लिए भी कहना पड़ जाता है। दीवाना हुआ बादल, आइए आप भी सुकून मौसीकी के इस रवानगी के बीच में अपने आप को बहा लें। यही वक्त है, यही मौका है, तो इंतजार किस बात।

बांसुरी की तरह है जिंदगी। इसमें बहुत से छेद रूपी बाधाएं हैं और जिसको इसे बजाना आ गया ना, उसे जिंदगी जीना आ गया। बांध कर मुझसे उड़ने को कहता है, मेरा कातिल ही मुझे जीने को कहता है। हर कदम देता रहा जो मुझको धोखा, बेवफा दोस्त वफा करने को कहता है। किससे करें फरियाद इंसाफ के लिए, मुझे लूटने वाला ही मेरे घर में रहता है। ना कर तजवीज तुम मुझसे मोहब्बत की, मेरे दिल में अरसे से एक बेमुरब्बत रहता है। फिर भी अगर मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता।

सोचता हूं कि ऊपर वाले ने इतनी बड़ी दुनिया के बीच में तो ऐसे शख्स क्यों बनाए जो सिर्फ और सिर्फ एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा देखते हैं। एक को चोट लगती है तो दर्द दूसरे को होता है। शायद यही मोहब्बत है। बेशक ना मिल पाए हूं, अलग अलग हूं, लेकिन फिर भी कभी कभी दिल में यह ख्याल तो आता है कि तुझको बनाया गया है मेरे लिए।

वायदा खिलाफी तो अक्सर मोहब्बत के बीच में देखी और सुनी जाती है, जिसे बेवफाई का नाम दिया गया है। बहुत वायदे कर लिए जाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ एक ही वायदे हैं जो पूरे हो जाते हैं। इसीलिए कहता हूं, जो है उसी से शुरू करें, जहां है वहीं से शुरू करें, और अगर खास मौके के इंतजार में रहे ना, तो इन खास मौकों के इंतजार में करोड़ों सपनों को बर्बाद किया है। जो वायदा किया है उसको अभी ही निभा लें, आने वाला कल पता नहीं एक पल भी आपको देगा या नहीं देगा।

हसीन मौसम हो, खूबसूरत फिजाएं हों, और महबूब का साथ हो, तो मरुस्थल के बीच में भी बाहर सी लगती है। तू जो मिल जाए तो खुशियों का रेला कर दे, गम के मरुस्थल में बरसात का ढेला कर दे। याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, याद तो वो है कि जो मेले में भी अकेला कर दे। और ऐसे हसीन खूबसूरत आशिकाना मौसम के बीच में क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ किसी अपने का साथ, किसी अपने का अंदाज, ताकि दोनों ही मिलकर कह सके कि मौसम आशिकाना है।

बरसती हुई बारिश और रोती हुई आंखों का एहसास उन्हीं को होता है जिनके घर कच्चे हों और दिल नाजुक। और बहुत सी उलझनों का जवाब यही है कि मैं अपनी जगह सही हूं, वो अपनी जगह सही है। तो दोस्तों, क्या है ये जिंदगी? जिंदगी सिर्फ मेरी नहीं, आपकी भी कहानी है। और हम दोनों की कहानी, इसी का नाम है जिंदगी।

सुकून मौसीकी की मार्फत हमने आपके दिलों में दस्तक देने की एक कोशिश की है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने ख्यालात, अपने विचार हमारे को हमारी ईमेल आईडी radiodasta@gmail.com के ऊपर जरूर भेजिए, ताकि हम अगले प्रोग्राम आपकी मर्जी के मुताबिक पेश कर सकें। रेडियो विदस्ता की आज की खास पेशकश सुकून मौसीकी में मैं रहा आपका रेडियो दोस्त नरेश शर्मा, आपका हम सफर।

दीजिए अपने इस दोस्त को इजाजत, फिर मिलता हूं किसी और प्रोग्राम के बीच में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

पेश मिले जुले गीतों का ये प्रोग्राम, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त रमेश मराठा। नमस्ते।

हम तो मुसाफिर हैं, मंजिल की तलाश में भटकते हैं। जानते हैं रास्ते दुश्वार हैं, कठिन हैं राहें, फिर भी सफर है जारी। पीड़ाओं के सहरा में कितनी जिंदगियां भटकती हैं समझना बड़ा मुश्किल है, पर समय की रफ्तार के साथ शायद इस भटके हुए मुसाफिर की तलाश खत्म हो, ताकि एक नई सुबह का आगाज हो सके।

फरिश्तों के इस मौसम में कुछ अनकहे सवालात, कुछ अनसुनी बातें रह गई पीछे, शायद यह सोचकर कि हम हदे परवाज को छूने की नाकाम कोशिश करते रहे, करते रहे अपनी तमन्नाओं, अपनी आरज़ुओं का बेसब्री से इंतजार, बुलंदियों में अपनी परवाज लिए अपने आसमां को तलाशने की कोशिश करते रहे।

आशम और उमंगों के साथ हम अपनी परवाज लिए आपके दिलों को छूने की जुरत तो जरूर करेंगे, पर धीरे धीरे अपनी मोहब्बत का इजहार भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दिलों में बसती है धड़कने और धड़कने आपकी याद दिलाती हैं।

0: पंचमहल एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए।

सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं सिंगर नीलम नारायण। मेरा एक बहुत प्यारा वीडियो सॉन्ग मीठे मीठे इश्क की रिलीज हो चुका है, जो आप रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पे सुनने जा रहे हैं। अपना स्नेह जरूर दें। धन्यवाद।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

90.0 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

मदद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने अब होगा तेरा अंजाम क्या।

0: सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।
1: You are listening 90.0 FM, Radio Vitasta, हम सफर जिंदगी का

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुन।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
4: प्रस्तुत है कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 6। आज के हमारे आमंत्रित मेहमान है श्रीमती कविता अग्रवाल और आज का विषय रहेगा परिवार और समाज। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का।
5: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी और आप सुन रहे हैं घर परिवार का एक नया अंक। आज हमारे साथ है एक ऐसी शख्सियत जो न केवल अपने परिवार की आधारशिला है बल्कि समाज के प्रति भी गहरी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी रखती है। इन्होंने अपने जीवन में परिवार और समाज के बीच संतुलन को समझने और उसे साकार करने का जो प्रयास किया है वो प्रेरणादायक है। आइए स्वागत करते हैं कविता अग्रवाल जी का, जो आज हमें परिवार और समाज के विषय पर अपने विचारों से समृद्ध करेगी।
6: किरणी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका प्रदान करा कि मैं अपने विचार, परिवार और समाज के प्रति मेरे जो भी विचार हैं वो मैं अपने श्रोताओं से साझा कर सकूं।
5: बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने का। मेरा पहला प्रश्न आपसे है, हम अक्सर सुनते हैं कि परिवार और समाज एक दूसरे के पूरक है, लेकिन हर किसी के पास इसकी अपनी परिभाषा होती है। मैं जानना चाहूंगी कि आपके दृष्टिकोण से परिवार और समाज का क्या अर्थ है।
6: देखिए, जिन लोगों के बीच हम सुरक्षित महसूस करते हैं, जहां हमें जजमेंट का डर नहीं होता, हम उन्मुक्त होकर अपने विचार रख सकते हैं, अपने डिमांड्स रख सकते हैं, जहां पर हम फिजिकली और इमोशनली सुरक्षित महसूस करते हैं, जिन लोगों पर हम अपना हक जता सकते हैं और जहां हर व्यक्ति एक दूसरे की फिक्र करता है और एक दूसरे की जिम्मेदारी लेता है, उसे हम परिवार कह सकते हैं। लेकिन जब हम समाज की बात करते हैं तो जैसे ही हम अपने घर परिवार से बाहर कदम रखते हैं तो जो लोग हमें मिलते हैं वो हमारा समाज है, जिन्हें हम जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, परंतु उनके प्रति हमारी कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है जिसे हमें निभाना ही निभाना है। निभाना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई हमारी स्ट्रिक्ट जिम्मेदारी नहीं है कि हमें उसको निभाना है। उसे हम समाज कह सकते हैं। सब परिवार हैं जो, वो मिलकर एक समाज बनाते हैं और सब समाज मिलकर देश बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं परिवार सबसे छोटी इकाई है और समाज का ही हिस्सा है। हम यह भी कह सकते हैं कि समाज वह जनसमूह है जिन्हें हम निजी तौर पर नहीं जानते, ना ही वो और ना ही हम एक दूसरे के दुख सुख के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन फिर भी हम आपस में बंधे हुए हैं एक मजबूत डोर से।
5: बहुत सही कहा आपने, बहुत ही गहराई से समझाया आपने। ये सही है कि परिवार और समाज एक दूसरे को प्रतिबिंबित करते हैं। आपका दृष्टिकोण वाकई सोचने पर मजबूर करता है। परिवार और समाज के इस जुड़ाव को हम अपने जीवन में कैसे महसूस कर सकते हैं, ये आपने बहुत खूबसूरती से समझाया। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है, परिवार और समाज को हमेशा एक दूसरे से जुड़ा हुआ माना गया है, आपकी नजर में इन दोनों के बीच का संबंध किस तरह का है? क्या ये रिश्ता परस्पर सहयोग पर आधारित है या इनमें से कोई एक दूसरे पर अधिक निर्भर करता है?
6: देखिए किरणी जी, ये संबंध जो है ना, ये बहुत ही गहरा संबंध है।

0: जो जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हमें बनना पड़ेगा। अगर हम फूल बांटेंगे तो बदले में फूल ना भी मिलें, कम से कम हमारे हाथ तो महकेंगे ना। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कई परिवार मिलकर समाज बनाते हैं और एक बड़ा परिवार बन जाता है, तो यह हम सबका उत्तरदायित्व है। अपने परिवार की तरह सबसे निस्वार्थ प्रेम करें, सबके साथ सहज रहें और बिना किसी को जज करें उसका साथ दें, उसको सपोर्ट करें। तभी तो हम, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं और हमारे भारतीय संस्कृति की बहुत ही एक मशहूर लाइन है वसुदेव कुटुंबकम, तभी तो हम इस नारे को सच कर पाएंगे कि जो हमारा सारा विश्व है वो ही हमारा परिवार है। संबंध तभी बनता है जब दोनों तरफ से सहभागिता हो। अगर हम समाज को अपना परिवार समझेंगे तभी उसके लिए चिंतित होंगे और तभी उसके लिए हम कुछ कर पाएंगे, सच्चे मन से कुछ कर पाएंगे। बाकी संबंधों की तरह यह भी गिव एंड टेक का रिश्ता है। जैसा दोगे वैसा पाओगे। जैसा समाज हमें चाहिए तो हमें अपने आप को उस समाज में फिट करने के लिए वैसे ही एक्शंस करने पड़ेंगे, वैसे ही विचारधारा रखनी पड़ेगी, तभी हम एक मजबूत और एक फ्रूटफुल समाज बना पाएंगे।
1: सही कहा आपने, सचमुच परिवार और समाज के बीच ये तालमेल बेहद अहम है। आपकी बात से ये साफ होता है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमारी बातचीत के दौरान हमने परिवार और समाज के बारे में कुछ सीखा, लेकिन अब थोड़ा म्यूजिक का मजा लेते हैं। कविता जी, हम जानते हैं कि हर किसी का कोई ना कोई पसंदीदा गाना होता है जो उनके दिल के बहुत करीब होता है, तो आपके पसंद का कौन सा गाना हम श्रोताओं को सुनाएंगे अब?
0: देखिए, जो पुराने गाने हैं वो सारे ही मेरे दिल के बहुत करीब हैं, परंतु एक गाना है जो मुझे बेहद पसंद है। क्या मैं उसे गुनगुना सकती हूँ?
1: हाँ जी जरूर।
0: तो वो इस तरीके से है,

0: प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जो अगला प्रश्न मेरा है वो है, आज के समय में जब व्यक्तिगत प्राथमिकताएं, परिवार की जिम्मेदारियां और सामाजिक दायित्व तीनों के बीच संतुलन बनाना एक चुनौती बनता जा रहा है, आपकी राय में परिवार और समाज के बीच ऐसा संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है जो न केवल व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करे बल्कि सामूहिक हितों को भी बनाए रखे।
1: देखिए, आपने बहुत ही अहम सवाल पूछा है। संतुलन शब्द जो है ना, वो अपने आप में बहुत ही नाजुक है। जब हमें संतुलन बनाना पड़े, चाहे वो रिश्तों में हो, खाने में हो, बातचीत में हो या समाज में हो, तो बहुत ही नाजुक कार्य है, क्योंकि जरा सा भी बैलेंस इधर उधर हुआ तो सब बिगड़ जाता है। अब क्योंकि परिवार और समाज दोनों का दायित्व हमारा है, तो हमने दोनों को ही समय देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर हम परिवार को ही सामाजिक कार्यों में सहभागिता दे दें तो कभी भी संतुलन नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि अभी हमारी दूसरे से एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाएंगी। यहाँ पर हमारे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, और व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वो पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है। ऐसे में व्यक्ति पहले अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, बाद में वो किसी और से एक उम्मीद करेगा। इसे हम एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए परिवार का कोई सदस्य किसी सामाजिक कार्य का हिस्सा बनना चाहता है। अब वो अपने कार्यालय से या अपने व्यवसाय से तो समय नहीं निकाल सकता, उसके समय के साथ वो छेड़छाड़ नहीं कर सकता, तो अब उसको जो समाज को समय देना है वो अपने पारिवारिक समय में से ही वो समय निकालेगा, जो कि परिवार के लिए एक खिज का, एक चिढ़ का कारण बन सकता है। उसकी समाज के प्रति एक नकारात्मकता भी आ सकती है कि हमारे समय में से वो समाज को समय दे रहा है, और ऐसा होना बहुत ज्यादा स्वाभाविक है। तो ऐसे में वो व्यक्ति क्या कर सकता है, समझदारी से काम लेते हुए वो अपने सारे परिवार के सदस्यों को उस कार्य का हिस्सा बना सकता है। उससे होगा क्या कि सारा परिवार एक साथ काम करेगा तो वो एक फैमिली टाइम स्पेंड कर पाएंगे, और जो हमारा लक्ष्य था हम उसको भी पूर्ण कर पाएंगे
0: जी।
1: लेकिन इसमें उस व्यक्ति को बहुत ही पेशेंस रखनी पड़ेगी और बहुत ही प्रेम से ये कार्य करवाना पड़ेगा, क्योंकि घर के हर सदस्य की सोच और विचारधारा

0: श्रोताओं के लिए बेहद उपयोगी रहेगा। अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जो मेरा अगला प्रश्न है वो है, आज की व्यस्त जीवन शैली में परिवार और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियां अक्सर पीछे छूट जाती हैं। आपकी दृष्टि में क्या हम अपने दैनिक जीवन में कुछ छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव कर सकते हैं जो न केवल हमारे परिवार को मजबूत बनाए बल्कि समाज के प्रति भी हमारा योगदान को बढ़ाए।
1: निश्चित तौर पर जब परिवार की बात आती है ना, तो हम किसी भी बदलाव के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे वो कोई दैनिक बदलाव हो, चाहे हमें अपनी कोई डेली रूटीन में कोई चेंज लाना पड़े, तो हम परिवार के लिए सब कुछ करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन जब समाज की बारी आती है तो हम कुछ कुछ एक्सक्यूजेस ढूंढने लगते हैं कि मेरे पास तो समय का अभाव है, या फिर मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या कुछ भी ABCD, हम कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस ढूंढने लगते हैं जब समाज की बात आती है। और इसकी वजह यह है कि हम समाज को ना अभी तक अपना नहीं बना पाए हैं। जब तक हम उसको अपना परिवार नहीं समझेंगे, तब तक हम उसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखा पाएंगे, तब तक हम उसकी किसी भी काम को करने के लिए वो डेडिकेशन हमारे अंदर आएगी ही नहीं, हम अपना योगदान उस तरीके से नहीं दे पाएंगे जैसा हम अपने परिवार के लिए देना चाहते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा एक सेफ समाज बने। आज के टाइम में हम अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने में क्यों डरते हैं? सबसे बड़ा कारण क्या है? समाज, कि समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं। हमें यही डर लगता है कि हमारे बच्चे बाहर जाएंगे तो किसी गलत संगत में ना पड़ जाएं, गलत लोगों की कंपनी में आके गलत आदतें ना सीख जाएं। आप सोचिए, अगर एक सुरक्षित और प्रेम भरा समाज होगा तो क्या हम बच्चों को बाहर भेजने से डरेंगे? बिल्कुल भी नहीं, हम निश्चिंत होकर अपने बच्चों को बाहर भेज सकते हैं। लेकिन ये समाज हम लोगों से बना है, ये अपने आप तो अच्छा नहीं बनेगा,
0: इसलिए हमें पहले अपने आप में बदलाव लाना चाहिए।
1: जैसा हम चाहते हैं कि समाज हो, हमें वैसे ही एक्शंस करने पड़ेंगे। जैसे बच्चों के लिए कहा जाता है ना कि बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं, बजाय कि वो जो सुनते हैं वो करेंगे, तो यही सबके लिए है। अगर हम चाहते हैं समाज में प्रेम फैले, सब मिलजुल के रहें, तो ये हमें अपने परिवार से शुरू करना पड़ेगा। परिवार में हम करेंगे, बच्चे देखेंगे, सीखेंगे, घर के बाकी सदस्य भी यही सीखेंगे, और फिर जब वो बाहर जाएंगे तब तक वो इनकी आदत में शुमार हो चुका होगा, तो फिर वो सभी के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा परिवार में करते हैं, और निसंदेह फिर हमारा समाज एक शांतिपूर्ण, एक प्रेम भरा समाज बन जाएगा, जो हमें बिल्कुल अपने परिवार की तरह लगेगा। चाहे हम घर के अंदर हैं, चाहे घर के बाहर हैं, हमें एक जैसा फील होगा। हमें ये नहीं लगेगा कि हमें कुछ चीजों को जबरदस्ती फॉलो करना है, कुछ रूल्स को फॉलो करना है, क्योंकि वो हम सबके बनाए हुए हैं और हम सबके लिए हैं, तो वो एक इक्वालिटी आ जाएगी हर चीज के अंदर। तो ये बहुत ही एक, जैसे सत्ययुग हम जिसको कहें, वो वाला माहौल हो जाएगा। ये हमारे ही हाथ में है कि हमें कैसा समाज बनाना है,
0: क्योंकि परिवारों का समूह ही तो समाज है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, परिवारों का समूह ही समाज है, और उस पर समाज को बनाने वाले हम लोग ही हैं। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें खुद को और अपने आने वाली जनरेशंस को कैसा समाज देना है, इस देश को कैसे नागरिक देने हैं, तो हमें उसी जिम्मेदारी के साथ काम करना है इस समाज को एक अच्छा बनाने के लिए। तो उसके लिए हम छोटे छोटे दैनिक परिवर्तन कर सकते हैं, कि जैसे अगर हमें घर में या घर से बाहर सफाई रखने की आदत नहीं है तो हम शुरुआत कर सकते हैं उसकी। अगर हमें क्रोध आता है तो हम उस क्रोध पे थोड़ा काबू पा सकते हैं, घर में भी और घर के बाहर भी। बिल्कुल इतने माइनर चेंजेस हैं ये, जिनका हमें पता भी नहीं चलेगा, ना हमें इनके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने हैं, ना इनके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा टाइम देना है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे वो ऐसा असर दिखाएगा, एक ऐसा समाज बन जाएगा जिसकी हम कल्पना तो जरूर करते हैं लेकिन अभी तक हमने उसको देखा नहीं है। वो हमारी कल्पना सच में बदल जाएगी अगर हम ये छोटे छोटे बदलाव अपने जीवन में शामिल कर लें, और औरों को भी प्रेरित करें कि वो भी यही सब करें।
0: हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, छोटे बदलाव वाकई बड़े प्रभाव डाल सकते हैं। हर किसी को अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। अब हम इस खूबसूरत बातचीत को थोड़ा संगीत से जोड़ते हैं। कविता जी, आपका पसंदीदा गाने के साथ कुछ और पल हम एक साथ बिताएं, आइए सुनते हैं ये गाना।

0: अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों की जो हमारे जीवन को सरल और स्वस्थ बना सकते हैं। कविता जी, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे पुराने घरेलू नुस्खे कितने प्रभावी हो सकते हैं। क्या आप हमारे साथ कोई ऐसा नुस्खा शेयर करना चाहेंगी जिसे आप खुद कभी इस्तेमाल किया हो और जो बहुत फायदेमंद साबित हुआ हो?
1: किरणी जी, अगर घरेलू नुस्खों की बात करें तो जो हमारी रसोई है ना, वो खजाना है नुस्खों का। उसमें आपको अधिकतर हर बीमारी का इलाज मिल जाएगा। वो तो आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम लोग अंग्रेजी दवाइयों का सहारा लेते हैं, क्योंकि वो हमें एकदम से आराम देती है। जो घरेलू नुस्खे हैं वो थोड़ा स्लो आराम देते हैं, लेकिन उनका फायदा ये है कि उनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। तो अगर हमारी रसोई के अंदर आपको हर बीमारी का इलाज मिल जाएगा। अब आजकल जैसे सर्दियों का मौसम चल रहा है, अक्सर हमें खांसी की शिकायत हो जाती है, तो मैं आपसे एक छोटा सा नुस्खा शेयर करूंगी जो जिसके लिए ना आपको कोई एक्स्ट्रा सामान लाने की जरूरत है, ना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत है। इसके लिए हमें केवल दो चीजों की जरूरत है, एक है हल्दी और एक गुड़, जो बड़ी आसानी से हम सबकी पाकशाला में मिल जाता है। तो आपने करना क्या है, बराबर मात्रा में हल्दी और गुड़ लेकर अच्छे से मिला लेना है और उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें। गुड़ क्योंकि मीठा स्वाद होता है तो इसको बच्चे बड़े हर कोई ले सकता है। जब भी खांसी हो इस गोली को, इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर इसको मुंह में रखें और चूसते रहें, क्योंकि ये प्राकृतिक चीजें हैं तो इनका कोई नुकसान भी नहीं है। तो आप इसको दिन में 3-4 बार भी ले सकते हैं, और छोटे बच्चे हैं अगर वो नहीं लेते तो आप उनको रैपर में लपेट के टॉफी की फॉर्म में भी उनको दे सकते हैं। उससे क्या होगा, डबल फायदा होगा, उनको टॉफी का स्वाद भी मिल जाएगा और उनकी खांसी में भी आराम आ जाएगा।
0: बहुत अच्छा नुस्खा, क्योंकि हल्दी जो है उसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं। ये कई बीमारियों को जैसे कैंसर तक को हल्दी ठीक करती है। कविता जी, ये नुस्खा तो बिल्कुल ही शानदार है। यहाँ हमें याद दिलाता है कि पुराने समय के इन छोटे छोटे उपायों में कितनी ताकत होती है। अब इन चमत्कारी नुस्खों के बीच एक और चमत्कारी चीज है, वो है संगीत। तो क्यों ना हम इस जानकारी पूर्ण पल को और भी खास बनाने के लिए आपके पसंदीदा गाने के साथ इसे और भी खूबसूरत बनाए।
1: गाने तो बहुत है लेकिन हम हर पल की कद्र नहीं करते। एक गाना है

0: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम घर परिवार। अब इस कार्यक्रम का अंतिम भाग, अब हम बात करेंगे एक ऐसी रेसिपी के बारे में जो न सिर्फ स्वादिष्ट हो बल्कि पौष्टिक भी हो। आपने हमें बताया कि आपको ऐसे व्यंजन पसंद है जो सेहत के लिए अच्छे हैं और साथ ही खाने में भी मजेदार है। क्या आप हमें अपनी पसंदीदा पौष्टिक और स्वादिष्ट रेसिपी के बारे में बताना चाहेंगे?
1: जरूर किरणी जी, मुझे कुकिंग का बहुत ज्यादा शौक है और मैं कुछ कुछ नया ट्राई करती रहती हूँ, लेकिन मेरी प्रायोरिटी होती है कि मैं बच्चों को हेल्दी खिलाऊं। सिर्फ बच्चों को नहीं, घर के सभी सदस्यों को हेल्दी भोजन खिलाऊं जिसमें उनको पौष्टिकता मिले और बाहर से बनी चीजों से उनका जो एक अट्रैक्शन है वो कम हो जाए। मीठे की क्रेविंग अक्सर हम सबको रहती है, खाना खाने के बाद मन करता है कुछ मीठा खाएं, लेकिन आजकल क्योंकि सब कोई हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं तो हमें ये डर रहता है कि हमने इतनी शुगर कंज्यूम कर ली है, अगर हम क्रीम की फॉर्म में लेते हैं तो हमने इतना मीठा खा लिया है। तो आज एक रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो कि आपकी गिल्ट फ्री है, आप उसको जी भर के खा सकते हैं, ना आपको एक्स्ट्रा फैट मिलेगा उससे, ना एक्स्ट्रा शुगर मिलेगी और हेल्थ बेनिफिट्स इतने हैं कि आपको रेसिपी सुन के ही समझ में आ जाएगा। रेसिपी का नाम तो बड़ा कॉमन है, वो है फ्रूट क्रीम, लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल अलग हैं। अक्सर फ्रूट क्रीम हम फ्रूट्स क्रीम और उसमें मीठा कुछ भी फॉर्म में, चीनी कुछ भी डाल के हम उसको बनाते हैं, लेकिन जो हमारी रेसिपी है इसके अंदर आप फ्रूट्स लीजिएगा अपनी चॉइस के, उनको बारीक चॉप कर लीजिए। क्रीम की जगह यहाँ पर हम डालेंगे 2-3 चम्मच गाढ़ा दही। दही के अंदर ना तो फैट होता है ना कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सारे इसके जितने बेनिफिट्स हैं दही के वो हम सब जानते हैं। और साथ में वैसे तो फ्रूट्स में अपना नेचुरल तौर पे काफी मीठा होता है, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि थोड़ी सी मीठे की जरूरत है तो आप इसमें 1/2 चम्मच हनी डाल सकते हैं या फिर 1/2 चम्मच शक्कर डाल सकते हैं जो चीनी के मुकाबले कम नुकसानदेह है। आप इसको खा के देखिए और यकीन मानिए कि बच्चे जल्दी से नहीं बता पाएंगे कि आपने क्रीम में नहीं बल्कि दही में बनाया है। और फ्रूट्स होने की वजह से पौष्टिक तो है ही है और इतनी फिलिंग रेसिपी है ये, अगर आप इसका एक बोल ब्रेकफास्ट में खा लें तो आई थिंक आपकी ब्रेकफास्ट की नीड को ये एकदम से कंप्लीट कर देता है। आप किसी भी टाइम इसको खा सकते हैं और अच्छा फिलिंग और टेस्टी और गिल्ट फ्री रेसिपी है ये। तो मेरी सलाह है कि आप सब इसे जरूर ट्राई करें। जो बच्चे दही नहीं खाते या फ्रूट नहीं खाते उनको खिलाने का ये बहुत अच्छा तरीका है।
0: आपकी ये रेसिपी न केवल स्वादिष्ट बल्कि सेहत के लिहाज से भी बेहतरीन लग रही है। हम सबको यकीन है कि ये डिश घर में हर किसी को खुश कर देगी। कविता जी, इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि इस विचारशील चर्चा से श्रोताओं ने भी कुछ नया सीखा होगा। जीवन के इस सफर में हम सब मिलकर एक सशक्त परिवार और समाज बना सकते हैं। क्यों ना हम सुने आपका एक और पसंदीदा गाना जो हमेशा आपके दिल के करीब रहता है। इस गाने के साथ हमें वो खास एहसास मिलेगा जो इस पल को और भी यादगार बना देगा।
1: मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ रेडियो वितस्ता का, जो अम्बाला कैंट का अपना रेडियो स्टेशन है। मुझे लगता है इस रेडियो स्टेशन के जरिए अम्बाला के लोगों को बहुत ऊंचाइयां छूने का मौका मिलेगा, वो अपने विचार लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे और तो और वो अपने व्यवसाय को और अपनी और विचारधारा को लोगों तक पहुंचा पाएंगे इसके जरिए। भारत जी, किरणी जी का ये बहुत बड़ा तोहफा है अम्बाला कैंट को, जिसके जरिए अम्बाला के लोग आपस में जुड़ जाएंगे और एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। रेडियो वितस्ता अम्बाला का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: कार्यक्रम के अंत में हमारा संदेश है, कभी रिश्तों में बसी होती है एक ऐसी खामोशी जो परिवार और समाज को जोड़ने की होती है एक कोशिश। जहां अपनों का साथ होता है वहां ताकत का एहसास होता है। समाज भी उस शक्ति से महकता है जब हर दिल में प्यार का एहसास होता है। रिश्तों के उस प्यारे सागर में हर व्यक्ति एक लहर है, साथ चलने से ही हम समाज को समझते हैं और संवारते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 6। आज के हमारे आमंत्रित मेहमान थे श्रीमती कविता अग्रवाल। आज का विषय था परिवार और समाज। कार्यक्रम को प्रस्तुत किया आज किन्नी ने, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
2: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: सुनिए और सुनाइए, रेडियो विदस्ता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

सुनिए बप्पी लाहिरी के दिल छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਬਾਲਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ।
3: ਕਰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਣ ਜੋ
2: ਰੇਡੀਓ ਵਿਤਸਤਾ
3: ਅਸਲੇ ਪੌਣ ਪਟਾਕੇ
2: ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਲਦਾਰਾ ਮੈਨੂੰ 90.0 ਮੈਗਾ

0: सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी और FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता से मैं लाइव हूं और आप सभी दोस्तों का पैनल पर स्वागत और अभिनंदन। आप सभी श्रोताओं को भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं कार्यक्रम राम राम हरियाणा, जो सोमवार से शुक्रवार तक शाम के 4 बजे से 5 बजे तक होता है, जहां हम अपने गांव की बात करते हैं, अपने प्रदेश की बात करते हैं, अपने देश की बात करते हैं। और कोशिश ये है कि हम सभी को एकजुट एक पैनल पर, एक पटल पर लेके आए। आप सभी की जानकारी के लिए मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि जितने भी श्रोता हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं, उन सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं इस शो के दौरान 4 से 5 बजे तक। कोई अगर आपने अच्छा काम किया है, आप उसके बारे में बता सकते हैं। अगर आपने कोई समस्या है आपके पास जो आप हरियाणा सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, आप वो भी हमारे साथ इस पटल पर साझा कर सकते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में हमारे पास हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। हमारी कोशिश है कि हम आपके समस्या का समाधान कर सकें, ये हमारी कामना भी है, ये हमारी कोशिश भी है। इस कार्यक्रम का नाम है राम राम हरियाणा और आज है 23 जून 2026 मंगलवार, अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष नवमी 2083 विक्रम संवत। और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान है ग्राम कराह पेहवा खंड से श्री सरदार साधु सिंह जी। और सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, जो हमारे मार्गदर्शक है, वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने हैं अपने कार्यालय से। और आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मुझे लग रहा है कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही कॉल आया। हेलो, कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं? जी, कॉलर की आवाज तो हमें नहीं आ रही है। वीरेंद्र सर, आपका भी स्वागत और अभिनंदन आपकी टीम के साथ। और मैं गुरविंदर जी का और साथ में प्रीतम जी का भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और माइक सर, डॉक्टर वीरेंद्र सर, आपकी ओर दे रहा हूं। वीरेंद्र सर, आपको हमारी आवाज मिल रही है? चलिए, जब तक वीरेंद्र सर जुड़ते हैं हमारे साथ,
1: नमस्कार। आज वीरेंद्र जी, आपकी आवाज आ रही है?
2: आ रही है सर, आवाज आ रही है।
0: भारत जी, जी अब आ गई सर आवाज।
2: शायद आवाज जी पहुंच रही है। भारत जी से नक्षत्र नहीं मिल रहे क्या?
0: क्यों सर?
2: किसी एक विद्वान ब्राह्मण को
3: तो भी आ रहे हैं सर।
2: मेरे को लगता है कि कश्मीर के ही क्या करनी पड़ेगी
0: सर। नक्षत्र तो सर, नक्षत्र तो बहुत
2: पानी के मंदिर के पुजारी से नक्षत्र के लिए कहना पड़ेगा। राम राम सुनने वाले, राम राम हरियाणा सुनने वाले सभी मित्रों को मेरा वीरेंद्र सिंह।
0: आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, मेरे पास रुक रुक के पहुंच रही है।
2: अरे जी, मैं अपनी बात कहता हूँ एक क्षण के लिए।
0: जी सर, प्लीज।
2: क्या है, मैं सोच रहा हूँ इसको क्लियर करने की जरूरत है। आइए देखिए जरा। शायद इंटरनेट का मसला होगा मेरी तरफ से, मतलब मेरे मन से और मेरी ऊर्जा में कतई कोई हफ्ती भर कमी नहीं है। मैं पूरी ताकत के साथ अपने सब मित्रों के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। और
3: मैं हमारे पास ठीक आ रही है सर।
2: आपसे विराम लूंगा, मैं लौटूंगा अपने दोस्तों के साथ। सुनने वाले मित्र हैं, उन सबके साथ बातचीत करते हैं। 5 मिनट के अंतराल के बाद आज के कार्यक्रम में हम राम राम हरियाणा में भारत के एक महान सपूत को स्मरण कर रहे हैं और उनका नाम है डॉक्टर श्यामा
0: प्रसाद मुखर्जी।
2: श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने जम्मू कश्मीर के भारत में अधिमिल प्राण अर्पित कर दिए। ऐसे बलिदानी महापुरुष को हम स्मरण करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन हम ब्रेक ले रहे हैं यहाँ से, हमारे सभागार से 5 मिनट के लिए। भारत जी 5 मिनट के लिए आप राम राम हरियाणा को आगे बढ़ाएंगे, तब तक अपने मेहमान सरपंच से आप चर्चा कर लेंगे। हम एक बार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि करके वापस आपकी इस सभा में राम राम हरियाणा में लौटेंगे। मैं कार्यक्रम की कमान एक बार फिर से भारत संस्था के संचालक हैं अंबाला कविता की धारा वो ले आए हैं अंबाला में हरियाणा में। भारत जी, ओवर टू यू, और मुझे केवल 4 से 5 मिनट का ब्रेक चाहिए। इस बीच में हम आपको आपके स्टूडियो में नजर नहीं आएंगे, हमारी आवाज भी आप तक नहीं पहुंचे, तब तक आप अपने मेहमान से बातचीत करना शुरू कर लीजिए और हम लौटेंगे तो बात होगी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जब बात करेंगे तो एक कश्मीरी होने के नाते, कश्मीर मूल के रहने वाले होने के कारण भारत सोपोरी जी आप पर बात, उनके जीवन पर, उनके कार्यों पर बात जरूर हो। ये तार जो बंगाल से लेके कश्मीर को जोड़ता है उसको हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते हैं। जी
0: जी, धन्यवाद धन्यवाद सर। आप सभी श्रोताओं का और पटल पर जितने भी हमारे साथ दोस्त हैं उन सभी का स्वागत एक बार फिर। प्रीतम जी, आप कैसे हैं और क्या आवाज आ रही है इस समय चरखी दादरी से?
1: नमस्कार भारजी और सभी श्रोता सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। भारजी, यहाँ दादरी में मौसम बड़ा सुहाना है, हल्की हल्की बारिश हुई है अभी लगभग 1 घंटे पहले
0: जी,
1: और दादरी वाले तो अब चाय के जल पकौड़ों का मजा ले रहे हैं
0: और हमारे मुंह में आप पानी ले आ रहे हैं तो हमारे लिए भी कुछ पकौड़ों का इंतजाम करना चाहिए था। खैर चलो, किसी और दिन सही। गुरविंदर जी, और आपका भी स्वागत, आप कैसे हैं और आज के जो हमारे मेहमान हैं आप उनके बारे में कुछ परिचय दीजिए, उसके बाद हम साधु सिंह जी से बात करना शुरू करेंगे। जी गुरविंदर जी,
3: राम राम हरियाणा के आज के प्रसारण में जुड़े सभी श्रोताओं और हमारे पैनल में जुड़े सभी मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपने जरूरी कामों से ये समय निकाल कर हमारे प्रोग्राम में हाजिर हुए हैं। तो जैसे कि हम रोजाना एक ग्राम पंचायत इस प्रोग्राम में जोड़ते हैं ताकि हमारे और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारे सरपंच साहबान हैं, उनको कोई मार्गदर्शक मिल सके। हम उनके भी जो कमेंट्स हैं वो भी लेते हैं, हमारे जो मेहमान सरपंच होते हैं उनके साथ भी वो साझा करते हैं अपने जो तजर्बे हैं। उसी कड़ी में आज हमारे साथ जो ग्राम पंचायत कराहा साहब एक पंचायत है, ये विकास खंड पहोवा की पंचायत और जिला कुरुक्षेत्र है, वहां से हमारे सरपंच श्री साधु सिंह जी हैं। ये साधु सिंह जी पोस्ट ग्रेजुएट हैं और इन्होंने बड़ा अच्छा जो अपना कार्य वहाँ साफ सफाई, पीने का पानी का और सीवरेज सिस्टम इन्होंने डलवाया है गांव में। दूसरा, और ये गांव है जो एक हिस्टोरिकल ऐतिहासिक गांव है, इस गांव में हमारे सिख धर्म के जो 4 गुरु साहबान हैं, पहली पास से श्री गुरु नानक देव जी, छेवें पास से श्री हरगोबिंद साहब जी, 9वें पास से श्री गुरु तेग बहादुर जी और 10वें पिता हमारे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, वो जहाँ पे पधार चुके हैं और उनका एक रात का जहाँ पे ठहराव भी है, इसलिए ये गांव बड़ा ऐतिहासिक है। जहाँ पे एक जो गुरुद्वारा साहब बना हुआ है वो श्रोमणी प्रबंधक कमेटी के अंदर काम कर रहा है। और दूसरा, इस गाँव में मतलब ये एक छोटा सा गाँव है, 2500 वोट है, 5000 के लगभग इनकी वादी है, मतलब बड़ा बढ़िया इन्होंने ये गांव बना के रखा है। बाकी मैं जो गांव का जैसे विकास इन्होंने किया, हमारे सरपंच साहब जो आज के मेहमान है, पहले तो मैं इनका धन्यवाद करता हूं इतने थोड़े समय पे जुड़ने के लिए। दूसरा, मैं इनको गुजारिश करता हूं कि अपने गांव के बारे में अपने मुख से ये अपने विकास की कहानी को हमारे श्रोताएं और हमारे जो पैनल में जुड़े मेहमान हैं उनके साथ साझा करे। साधु सिंह जी,
0: जी साधु सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन एक बार फिर। आप ग्राम करा जिला जो है पेवा के साथ आप जुड़े हैं, आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि आज आप हमारे इस कार्यक्रम के मेहमान हैं और आप विस्तार में अपने गांव के बारे में, अपने काम के बारे में, जब से आप सरपंच बने हैं तब से आप हम सबके साथ जानकारी साझा करिए। हमारा एक छोटा सा प्रश्न होगा, ज्यादातर बात आपकी होगी और क्योंकि आपकी बात इस समय लाइव सुनी जा रही है अंबाला के रेडियो वितस्ता से, चरखी दादरी से अपना रेडियो से, नारनौल में रेडियो अरावली से, करनाल में रेडियो गोंदर से, और भी अलग अलग सामुदायिक रेडियोस पर आपकी आवाज इस समय लाइव जा रही है। हम चाहेंगे कि आपके कार्यकाल में अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है जो और लोगों को भी करना चाहिए, आप उसके बारे में भी जरूर बात करें और विस्तार में बात करें, ताकि हम किसी और के लिए भी मार्गदर्शक बन सके। आपका स्वागत, अभिनंदन। आप अपने बारे में अपना परिचय और अपने गाँव का परिचय दें और शुरू करें।
2: जी
0: सर,
2: भारत जी, अगर सरपंच साधु सिंह जी के पास उनके गांव की चर्चा करने से पहले कश्मीर पर बात करना चाहेंगे आज के राम राम हरियाणा में। साधु सिंह जी से आपने उनके परिचय के साथ उनसे हमको क्या जानकारी चाहिए वो आपने कह ही दिया है शुरुआत, लेकिन आज हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को स्मरण करके करेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम अभी हरियाणा के हमारे बहुत सारे मित्र यहाँ बैठे हैं इस कॉन्फ्रेंस में, कौन से दो जिले हैं? नूह और पानीपत जिलों के हमारे प्रशिक्षु इस सभागार में हैं, जहां मैं आप सबसे बात कर रहा हूं। लेकिन एक चित्र में शुरुआत कर चाहिए, सही चाहिए, कोई मिलावट नहीं करनी उसमें, ठीक है ना? कोई मिलावट नहीं, कोई दिखावट नहीं। अपने में से कौन कौन ऐसे साथियों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम कॉलेज में या विश्वविद्यालय में या विद्यालय में पढ़ते समय सुना या पढ़ा था, ऐसे कौन कौन? कुल मिलाकर के दो हाथ खड़े हुए। ऐसे कौन कौन है जिन्होंने काम शुरू करने के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम सुना? ऐसे वैसे सब होने चाहिए, क्योंकि एक योजना ग्राम विकास की उनके नाम से केंद्र सरकार लेकर आई थी, तो नाम तो सबने सुन ही लिया होगा। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा भारतवर्ष का कि एक ऐसे महापुरुष जिनका राष्ट्रीय जीवन में स्वाधीन भारत में योगदान वो गजब का रहा, अद्भुत रहा, जिनका योगदान भारत के एकीकरण के अधूरे काम को पूरा करने की दिशा में अद्भुत था, उनको हमने किताबों में ही नहीं पढ़ाया। आपने गवाही दे दी ना, स्कूल की किताब कहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र करती हुई नहीं दिखी जब आप पढ़ रहे थे, जब मैं पढ़ रहा था। कॉलेज की किसी किताब ने भारत के उस अद्भुत सपूत का जिक्र नहीं किया जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिनका योगदान था जम्मू कश्मीर और भारत के अधिमिलन को संपूर्ण करने के लिए प्राण दे करके जिन्होंने एक मशाल जलाई थी, उनका जिक्र कॉलेज की पुस्तक में भी नहीं था, विश्वविद्यालय की किसी किताब में भी जिक्र नहीं था। चिंता की बात थी कि नहीं? दुर्भाग्य की बात थी। लेकिन आज हम उनकी पुण्यतिथि पर, आज ही के निदान हुआ था इस मायने में कि वो हिरासत में थे जम्मू कश्मीर सरकार की, और जम्मू कश्मीर सरकार की उस सरकार की हिरासत में थे जो उनको जम्मू कश्मीर में घुसने देना नहीं चाहती थी। भारत की स्वाधीनता के बाद भारत आजाद हो गया, सरदार पटेल के नेतृत्व में देश की 550 से अधिक रियासतें, इंडियन स्टेट्स जिनको कहते थे, उन भारतीय स्टेट्स को रियासतों को मिला करके भारतवर्ष, स्वतंत्र भारतवर्ष का एक मानचित्र बना, ये तो पढ़ा है ना सबने, वो मानचित्र इस मायने में अधूरा था कि उन रियासतों में जो सबसे बड़ी थी क्षेत्रफल के हिसाब से, उस रियासतें

0: 550 से अधिक रियासतें एक अधिमिलन पत्र पर दस्तखत करके वो भारतवर्ष का अंग बन गई। ये सच है ना, ये इतिहास है। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य की बात है कि वैसे ही कागज पर जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह जी ने दस्तखत किए, जम्मू कश्मीर भी वैसे का वैसे हो जाना चाहिए था। परंतु सरदार पटेल का जो दृष्टिकोण था और उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का जो दृष्टिकोण था उस पर आज ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, पढ़ना चाहिए सबको। उसमें हेरफेर था, अंतर था। सरदार पटेल अन्य राज्यों की तरह जूनागढ़ से लेकर के हैदराबाद तक जिस तरह उन्होंने सारी रियासतों को सीध में ले आदी थी, उसी तरह जम्मू कश्मीर को सीध में लाने के पक्षधर थे। सरदार पटेल अपने मित्र शेख अब्दुल्ला को प्रसन्न करना, सॉरी पंडित नेहरू अपने दोस्त शेख अब्दुल्ला को प्रसन्न करना चाहते थे, उनके हाथ में ताकत देना चाहते थे। भारत में जम्मू कश्मीर के अधिमिलन को उन्होंने अधर में लटकाकर रख दिया और कहीं ना कहीं इस बात पर समझौता करके बैठ गए कि भारत का तो एक संविधान होगा लेकिन जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य रह जाएगा जिसका अपना अलग संविधान होगा, समूचे भारत का एक तिरंगा एक निशान होगा जो भारत की पहचान होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर अपना भी झंडा लगा करके रखेगा। भाई झंडा तो जोधपुर वालों का भी था, जयपुर की रियासत का भी था, जितने नवाब और रहे होंगे सबका अपना अपना कोई झंडा था, वो भी चाहते होंगे रखना, लेकिन तय हुआ था कोई किसी का झंडा नहीं रहेगा, एक झंडा तिरंगा रहेगा। ये बात जम्मू कश्मीर पर भी लागू होनी चाहिए थी लेकिन दुर्भाग्य से लागू नहीं हुई। अनुच्छेद 370 और 35 ए के कारण जम्मू कश्मीर प्रांत को अस्थायी रूप से अधिक शक्तियां दी गई थी। उन शक्तियों के कारण नदी का क्या था, जम्मू कश्मीर का झंडा कायम, जम्मू कश्मीर का संविधान कायम, जम्मू कश्मीर के प्रधान को मुख्यमंत्री नहीं कहते थे।
1: सर एक कॉल,
0: उस समय हम पंजाब थे, हमारा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पंजाब कहलाता था।
1: एक कॉल आ रहा है सर, एक कॉल आ रहा है सर। जी जी हेलो, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
0: के लिए कॉलर को होल्ड पे रख सकते हैं।
1: जी जी
2: जी राम सर
0: भारत जी
1: जी
2: जी राम राम पूरे हरियाणा वासियों को सभी को आज रोहन मशवरा जम्मू कश्मीर का था, इससे मैं भी कुछ इतना कहना चाहता हूँ सर, ध्यान से
0: रुकिएगा भारत जी,
1: आप सुनिए जो कॉल कर रहे हैं आप सुनिए। डॉक्टर
0: वीरेंद्र सिंह चौहान बात पूरी करूंगा।
1: जी जी जी जी
0: नाम क्या है इनका, नाम पूछे,
1: आपका नाम क्या है?
2: लाल बहादुर शास्त्री कृष्ण ने राजस्थान समझौता हुआ उस वक्त जम्मू कश्मीर को विलय कर दिया गया था।
1: जी आपसे अनुरोध है कि आप सुनिए, आप सुनिए जो जो चर्चा चल रही है आप सुनिए उसको। जी वीरेंद्र सर प्लीज कैरी ऑन।
2: हाँ जी ठीक है
0: जी। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि हम पंजाब थे, हमारा जो राज्य का निर्वाचित मुखिया होता था उसको क्या कहते थे, पंजाब का मुख्यमंत्री। मान लीजिए आंध्र प्रदेश उस समय राज्य रहा होगा, ओडिशा राज्य रहा होगा, असम रहा होगा, इन सबके मुख्यमंत्री हुआ करते थे और जो जम्मू कश्मीर का मुखिया होता था वो क्या कहलाता था,
1: सदरी रियासत।
0: क्या कहलाता था?
1: सदरी रियासत।
0: सदरी रियासत,
1: यस
0: सदरी रियासत कहलाता, प्रधानमंत्री कहलाता।
1: यस
0: भारत का सदरी रियासत एक, जम्मू कश्मीर का सदरी रियासत अलग, भारत का संविधान एक, जम्मू कश्मीर का संविधान अलग, और बहुत सारी समस्याएं थी जिनको भारत जीत भारत सुपोरी जैसे हमारे लाखों वहां के जो खास तौर पर विस्थापित पंडित था उन्होंने बाद के समय में भुगता। तो ये जो गड़बड़ हो गई थी उस रियायत देने के जम्मू कश्मीर के प्रांत के लोगों को या वहां के सियासतदानों को रियायत देने के चक्कर में आलम ये था कि कश्मीर कहने को मेरा और आपका था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर किसी को जाना पड़ता था, हम में से कोई हमारा कोई पूर्वज श्रीनगर जाना चाहता था तो बॉर्डर पे रुकना पड़ता और वहां से एक परमिट लेना पड़ता था। दिल्ली वालों को राजस्थान जाने के लिए कोई परमिट नहीं चाहिए था, तमिलनाडु जाने के लिए कोई परमिट नहीं चाहिए था, केरल जाने के लिए कोई परमिट नहीं चाहिए था, लेकिन वहां जाने के लिए नेपाल भी चले जाते थे लेकिन अपने देश में जाने के लिए परमिट चाहिए था। डॉक्टर श्यामा

0: प्रसाद मुखर्जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक नारा दिया स्वतंत्र भारत में कि एक देश में एक एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान, ये हमको स्वीकार नहीं है, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और ये नारा देके उन्होंने कहा, तुम परमिट मांगते हो मेरे से मेरे देश की धरती पर आने के लिए, मैं आऊंगा रोक लो मुझे। तो वहां की सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया और माना यह जाता है कि उस हिरासत के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में, जैसे उनका प्राणांत हुआ, वो कोई बीमार नहीं थे, कोई और ऐसी बात नहीं थी, संदिग्ध परिस्थितियों में हिरासत में उनकी मृत्यु हुई। जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए, जम्मू कश्मीर के भारत में अधिमिलन के लिए, स्वतंत्र भारत में कोई व्यक्ति जिसने अपने प्राण दिए हो, ऐसा व्यक्ति हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कह सकते हैं। बहुत ब्रिलियंट आदमी थे। बस बहुत संक्षेप में दो बातें कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत अच्छे पढ़े लिखे परिवार में पैदा हुए पश्चिम बंगाल में। देखो कोई कहां के व्यक्ति है, पश्चिम बंगाल के लिए चिंता किसकी कर रहे हैं, कश्मीर की। ये दर्शाता है कि भारत का दिल वो केरल से लेके कश्मीर तक, ले लद्दाख और उससे ऊपर तक भी एक ही फ्रीक्वेंसी पर धड़कता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनकी पृष्ठभूमि ये है, एक बहुत बड़े शिक्षाविद और न्यायाधीश के घर में जन्मे आशुतोष मुखर्जी, इनके पिता का नाम था, बहुत अपने आप में प्रतिभावान थे। आशुतोष मुखर्जी के पुत्र श्यामा प्रसाद, वो महज 33 वर्ष की आयु में, अपने में 33 का कौन कौन है, सारे सीनियर हो लिए हैं, एक आधा है कोई है, क्या नाम है आपका, प्रीतम, दीपक, दीपक जी का दिया 33 पर जल रहे फिलहाल ना। तो 33 वर्ष की आयु में, जहां लोग कभी कभी असिस्टेंट प्रोफेसर भी नहीं लगते, क्यों पंकज जी, ये व्यक्ति इतने प्रतिभावान रहे होंगे कि वो विश्वविद्यालय के कुलपति बन गए थे। जब संयुक्त भारत, मतलब जब स्वतंत्र भारत की पहली सरकार बनी, तो एक आइडिया ठीक था, वो विचार अच्छा था कि सरकार बनी, कांग्रेस पार्टी के नाम से सारा देश लड़ता था आजादी की लड़ाई, तो जो कांग्रेस से थोड़ा बहुत दाएं बाएं भी विचार रखते थे उनको भी सरकार में शामिल किया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो हिंदू महासभा के नेता थे, पंडित नेहरू के साथ वैसे उनके डिफरेंसेस थे, लेकिन जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो भी कांग्रेस से सहमत नहीं थे बहुत सारे मसलों पे, उनको भी शामिल किया गया सरकार में, ठीक उसी अंदाज में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी भारत के पहले मंत्री परिषद में मंत्री बने, उद्योग और आपूर्ति के मंत्री के रूप में बने। डॉक्टर अंबेडकर क्या थे, कौन से मंत्री थे, भारत के पहले कानून मंत्री जैसे थे, तो ऐसे पहले उद्योग मंत्री बने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लेकिन पॉलिसी को लेकर डिफरेंसेस आए और उन्होंने तय किया कि इस धारा में रहकर तो गुजारा नहीं होगा, मंत्री परिषद से इस्तीफा दिया और फिर राष्ट्रवादी विचार का झंडा उठा करके एक नए राजनीतिक दल के गठन की दिशा में बड़े, जनसंघ पैदा हुआ। तो जनसंघ बाद में कालांतर में आपातकाल के बाद वो बना, भारतीय जनता पार्टी बना। तो वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने उस समय जब कोई अड़ने के लिए तैयार नहीं था पंडित नेहरू के, एक समय थे ना, कुप्ती की बजाय भी बिरणी की में और बाजता होगा, ऐसा कहते हैं ना कि अगर खंबे को पंडित जी टिकट दे देते तो जीत जाता नहीं, जीत जाया करता था। उस समय में कश्मीर के प्रश्न को लेकर के जो अड़े लड़े, और केवल अड़े लड़े नहीं, प्राण ही दे दी, ऐसे व्यक्ति की आज पुण्यतिथि है। मैं आप सबके बीच में उनका जिक्र करने के लिए इसलिए आया था कि हम सब लोग जब आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं, हम सब लोग जब भव्य भारत बनाने की बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर उस चित्र का एक अभिनंग है कि नहीं, है ना। आज इस बात पर हम संतोष कर सकते हैं कि जिस नारे के साथ वो चले थे, कभी कभी यूं लगता है कि ये कह रहे हैं ना डॉक्टर, मतलब जब वो कह रहे होंगे तो लोगों को लगता है ये तो नहीं हो सकता। अपने में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 370 के रहते हुए 370 को देखा, पढ़ा,
1: हमें क्या कहते थे लोग, बोले इसके नहीं कोई भी हाथ ला सकता।
0: देश के बड़े से बड़े न्यायविद संविधान विशेषज्ञ ये कहते थे आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी टच्ड,
1: और दलील ये थी कि इसको हटाने के लिए तो वहां की संविधान सभा होनी चाहिए, संविधान सभा नहीं होगी तो ऊपर हटेगा, यू को नहीं हटगा, जो मर्जी करो। इससे आगे भी था पॉलिटिकली क्या कहा जा रहा था,
0: महबूबा मुफ्ती ये कहती थी कि अगर 370 अनुच्छेद को छेड़ा गया तो कश्मीर में भारत का झंडा उठाने वाला हाथ नहीं रहेगा, अरे तिरंगा तो कोई ठावे को नहीं। एक दूसरे मुख्यमंत्री थे उमर अब्दुल्ला, उन्होंने ये कहा था कि अगर 370 हट गई यानी भारत में कश्मीर का विलय पूरा हो गया, अधिमिलन पूर्ण हो गया,
2: हेडफोन छोटा था
0: तो हम कश्मीर वाले तो इधर चले जाएंगे या उधर चले जाएंगे, चीन का नहीं देखेंगे या पाकिस्तान
2: जो ये हेडफोन
0: की तरफ पलट जाएंगे। लेकिन आज गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे जीवन काल में जिस चीज को असंभव माना जाता था ये कभी नहीं आता।
2: ये भी सुनेगी क्या हो रहा है,
0: जब देश ने सही लोगों को चुन करके आगे भेजा, जब वो सही लोग सही ढंग से 370 के नुकसान देश के सामने रख पाए, तो भारत की संसद ने अनुच्छेद 370 और उससे भी खतरनाक जो 35A था उन दोनों को क्या किया, कितने देर लगाए उखाड़ के फेंकने में, किसी को ध्यान है कितने सेकंड लगे थे? गृह मंत्री सदन में खड़े हुए, दो प्रस्ताव रखे, देश की निर्वाचित संसद ने कहा बल्ले बल्ले तुसी ठीक हो, प्रस्ताव पारित हो गए, ना कश्मीर में किसी ने चूकी, और वो एक अपने आप में एक पक्ष है, लेकिन मैं उसको यूं कहता हूं
2: आज जब तेज लगा के दो
0: जी का हम बलिदान दिवस मना रहे हैं कि वो मिशन जिसके लिए वो कलकत्ता से चलकर श्रीनगर के लिए निकले थे, जिसके लिए उनके प्राण निकले थे, वो मिशन अब जाकर के इतने दशकों के बाद पूरा हुआ है। आज का कश्मीर अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पहले के कश्मीर से बहुत बेहतर है, बहुत मायनों में बेहतर है, और तो अध्ययन आप लोग कर लेना। लेकिन एक बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा, भारत जी खुद कश्मीर के रहने वाले और विस्थापन का दर्द झेलने वाले हैं
2: जी।
0: आज का कश्मीर इस मायने में बेहतर कश्मीर है कि कश्मीर में तिरंगे को किसी का भय नहीं है, लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए फहराने की इच्छा रखने वालों को किसी आतंकी से डरने की आवश्यकता नहीं है, मेरे और आपके तिरंगे की तिरंगे का जो वर्चस्व है उसका उसका रोब रुतबा है वो मेरे कश्मीर के एक एक इंच पर है। हम भारतीयों के लिए मैं तो सच में एक अभी तरले में अद्भुत सुख की अनुभूति होती है, लहू जो शिराओं में बहता है वो तरंगित होने लगता है। इस मायने में कश्मीर भिन्न है, कश्मीर इस मायने में भी भिन्न है। हम सब लोग संविधान को अपनी सबसे बड़ी पुस्तक मानते हैं कि नहीं, स्वतंत्र भारत में देश का शासन चलाने के लिए सबसे बड़ी पुस्तक कौन सी है?
2: संविधान।
0: इसमें भी डिलाई है कुछ, कौन सी पुस्तक है? भारत का संविधान
2: जी।
0: भारत का संविधान भारत की सबसे बड़ी किताब है जिससे इस देश का शासन प्रशासन चलता है, जिससे इस देश के नागरिकों के कल्याण का इंतजाम होता है, प्रबंधन होता है। कश्मीर में भारत के संविधान के सैकड़ों प्रावधान 370 अनुच्छेद के कारण लागू ही नहीं होते थे। कानून पंजाब पे लागू होता, उत्तर प्रदेश पे लागू होता, उत्तराखंड पे लागू होता, मणिपुर पे, असम। उस कानून को लागू ही नहीं होने देना चाहते जहां पंचायत से जुड़े लोग बैठे हो। पंचायती राज अधिनियम, 3 स्तरीय पंचायतें पूरे देश में थी, कश्मीर में नहीं थी। SC ST का आरक्षण उस रूप में वहां लागू था ही नहीं। कश्मीर में बहुत सारे नागरिक ऐसे थे जिनको लोकसभा में वोट देने का अधिकार था, भारत जी कहे मानेंगे इस बात को
2: जी जी।
0: वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए बहुत सारे ऐसे नागरिक थे लाखों की संख्या में जो MP तो चुनते थे लेकिन पंचायत में या वहां के विधायक बनाने में उनका कोई रोल था ही नहीं, वो सारे संकट दूर हुए हैं। और मैं यही कहूंगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सपना देखा था, हम जीवन काल में हमने उसको पूर्ण होते हुए देखा। मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, भारत जी,
2: जी।
0: आप क्योंकि कश्मीर से हैं, आपकी एक टिप्पणी के साथ आज की इस वार्ता को यहाँ से हम शिक्षकों के मध्य जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ से संपन्न करेंगे, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।
2: जी
0: एक टिप्पणी आपकी जी, एक कश्मीरी के नाम।
2: वीरेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आज आपने मेरी जो संवेदनाएं हैं, मेरी जो जो रूह है वह इस समय बहुत तकलीफ में भी है, और मैं जरूर कुछ बातें जरूर कहना चाहूंगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय ऐसे भारतीय थे जहां पे अखंड भारत के वो पैरोकार थे, और उन्होंने कहा था कि एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, और ये वाकई एक सपना था, पर जो हमारी अब की सरकार है उन्होंने इसको कर दिखाया। मैं कश्मीरी पंडित और कश्मीरी विस्थापित होने के नाते एक चीज जरूर ये कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट था 370 से पहले, वो भी लागू नहीं था, और अगर लागू था तो वो देश के आरटीआई से डिफरेंट था, जहां पर हम भारत देश में कोई भी जानकारी लेने के लिए हम अप्लाई कर सकते थे भारत सरकार में और जम्मू कश्मीर में 370 हटने से पहले। अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते थे तो सरल शब्दों में कहा जाता था ये जानकारी लेने का आपको अधिकार नहीं है। बाकी आपने सारी बात बताई, मैं जरूर इतना कहना चाहूंगा कि हमें बहुत खुशी है कि 370 हटने के बाद हमारा भारत अखंड भारत हो गया, और मैंने खुद देखा है जब मुख्यमंत्री या वहां के जो चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर हमारे स्कूल में आते थे तो उसमें एक साइड इंडिया का झंडा लगा होता था तो एक साइड उनकी पार्टी का झंडा लगा होता था, वो हमें तब भी खलता था, और वो समस्या दूर होने के बाद हमारे देश में एक ही झंडा यानी तिरंगा, जिसके लिए हमने अपने घर बार, हमने अपना जीवन, अपनी संस्कृति, अपना सब कुछ छोड़ के हमने अपने आप को भारत के विभिन्न जगहों पर अपने आप को स्थापित किया, और रेडियो वितस्ता जो लहरें हैं वितस्ता की, रेडियो वितस्ता भी उसी का एक प्रमाण है कि हमने इतने साल बहुत मेहनत से अपने आप को संजोया, अपने आसपास के लोगों को संजोया, और सही दिशा में हमने काम किया, और हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम हथियार उठाएंगे, क्योंकि हम 2047 के भारत के लिए सभी काम कर रहे हैं, हम सभी का दायित्व है। और प्रोग्राम को यही इस बात को विराम देता हूं क्योंकि आधा समय हमने लिया है, इसी बात से मैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं साधु सिंह जी की ओर चलता हूं। मैं उन्हें ये पूछना चाहूंगा कि भारत देश को हम
3: जी एक कॉल आई है सर,
1: कॉल से बात करेंगे, उससे पहले बस एक वाक्य में मैं सबकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, सबको गूगल करके सर्च करके कुछ चीजें पढ़नी चाहिए। लगभग 890 भारतीय कानून और कानूनों के प्रावधान ऐसे थे जो कश्मीर पे लागू ही नहीं थे। कश्मीर की कोई बेटी अगर वो पंजाब में शादी कर लेती थी उसको अपने संपत्ति पे अधिकार
2: नहीं होता,
1: नहीं रहता था। ऐसी बहुत सारी चीजें जिस पे मैं घंटों बात कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भारत जी, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं साधु सिंह जी के साथ
2: जी।
1: आप कश्मीर से आइए, लौट चलते हैं
2: जी, वापस हम वापस
3: जिले
2: के जी। हमारे पास एक कॉल आ रहा है, हेलो
1: कॉलर को सुन लीजिए।
2: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
4: राम राम जी मैं बोल रहा हूँ सर, मेरा नाम सिंह है
2: जी।
4: हाँ जी
2: बताइए,
4: मैं ये कहना चाहता हूँ। हेलो
2: जी बताइए।
3: हाँ बोलिए,
4: मैं ये कहना चाहता हूँ सर, ये बार बार हमारे को ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का देश की आजादी में कोई रोल नहीं है
2: जी।
4: तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का रोल तो कांग्रेस का भी सर कोई ऐसा रोल नहीं है जो आजादी में, और कोई भी मतलब जो जाति की लड़ाई लड़ी है वो तो आम जनता ने, आम पब्लिक ने लड़ाई लड़ी है। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि आजादी के बाद भारत में बीजेपी की सरकार होती उस समय पे, तो आज हमारे देश का दुर्भाग्य ही कुछ और होता। आज हम जापान और शायद हम अमेरिका से भी हमारे पास ताकत ज्यादा होती, यदि उस समय आजादी के समय हमारे को भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस समय होती।
1: मैं भारत जी मैं उत्तर दे दूं?
2: जी जी प्लीज सर।
1: हाँ देखिए तथ्यों को इस रूप में रखा जाना चाहिए कि भारत का जो स्वाधीनता संग्राम है वो सारे देश ने निश्चित तौर पर एक होकर के लड़ा और उस समय जो राजनीतिक मूवमेंट था उसका नाम ही कांग्रेस था। ज्यादातर लोग सभी बाद में अलग अलग दलों में जो लोग रहे वो कांग्रेस होकर के लड़े थे। लेकिन ये भी सत्य है कि जिस धारा को कांग्रेस कहा जाता था और उस धारा के जो लीडर थे पंडित नेहरू समेत महात्मा गांधी समेत इनके स्तर पर बहुत सारी ऐसी छोटी बड़ी चूक हुई जिनका परिणाम स्वतंत्र भारत ने भुगता।

0: आज हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को स्मरण किया, उनके बलिदान, उनके कार्यों को याद किया, और अब हम भारत जी
1: जी, जी अब
0: के साथ, प्रीतम जी के साथ जी, वापस
1: धन्यवाद
0: सरदार साधु सिंह जी के पास,
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद रंजीत जी आपका।
1: साधु सिंह जी, अब जो बाकी समय बचा है वो सारा आपके लिए है, तो आप कृपया शुरू करें अपने परिचय और गांव के परिचय के साथ, प्लीज।
2: इस राम राम हरियाणा में मेरा सभी श्रोताओं को और सभी ऑर्गेनाइज को मेरा राम राम। मेरा नाम साधु सिंह सैनी, गांव मेरा करा साहिब
1: जी।
2: मैं पहले तो मैं डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ
1: जी,
2: की और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो जैसे कि उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए, जैसे कि डिटेल में हमारे महोदय जी ने, डॉक्टर महोदय ने बता दिया डिटेल में सारा कुछ कि उन्होंने लड़ाई लड़ी कि एक देश एक संविधान होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने अपने देश के लिए प्राण न्योछावर कर दिए और उनका रहस्यमय तरीके से उनका जो स्वर्गवास वहां हो गया
1: जी।
2: तो मैं उनको पुनः से दोबारा श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ
1: जी। आप अपने गांव के बारे में बताइए, आप तो गांव की रूपरेखा क्या है, किस तरीके से आपने अपने गांव को संवारा है, संभाला है और अच्छा और सुंदर बनाया है, और क्योंकि आप सरपंच है, आप गांव के प्रधानमंत्री है, तो कृपया विस्तार में बताएं जी।
2: जैसे कि मेरे गांव की सबसे बड़ी सुंदरता, तो मैं ये कहूंगा कि मेरे गांव की जो सबसे बड़ी सुंदरता है वो है आपसी भाईचारा। कि गांव में हमारा ऐसा भाईचारा है कि मैं तो ये समझूंगा कि सभी पंचायतों में ऐसे भाईचारा बना रहना चाहिए, क्योंकि एक सरपंच होने के नाते हमारा सबसे पहले फर्ज तो ये बनता है कि हम गांव में अमन शांति कायम रखें और आपसी भाईचारा को बना कर रखें
1: जी।
2: और पिछले प्लान में भी मैं सरपंच रहा हूं और दोबारा से लोगों ने मेरे पर विश्वास किया और मेरे को दोबारा से चुनकर भेजा। मैं पुनः से अपने गांव वासियों का भी धन्यवाद करता हूं, उनको उनका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मेरी शुरू से ही मैंने चुनाव लड़ने का कोई मेरा मकसद ये था कि मैं अपने गांव को जो विकास कार्य नहीं पहले हुए कभी वो विकास कार्य उनको करवा सकूं, और सबसे बड़ा ये कि आपसी भाईचारा बनाकर रखूं। मैंने चुनाव के बाद सभी को अपना समझा, जिसने किसी ने मेरे को वोट दी वो भी मेरा, जिसने नहीं दी वो भी मेरा। जब मेरे को लोगों ने चुन दिया, एक प्रतिनिधि चुन दिया, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं सभी का सरपंच हूँ
1: जी।
2: तो इसको आगे रखते हुए मैंने गांव को आगे बढ़ाने की कोशिश की, जैसे कि उसमें जो गांव में जो सबसे पहले मेरा टारगेट यह रहा कि गांव को साफ सुथरा कैसे रखा जाए, कैसा बनाया जाए। तो मैं अपने गांव में, ज्यादातर मेरे गांव में डेरे भी हैं, तो मैंने अपने गांव में डेरों में सबसे पहले सीवरेज की सुविधा उपलब्ध कराई, ताकि जो गलियां नालियों में गंद था वो किसी तरह का वो बीमारी ना फैले, मक्खी मच्छर ना हो। तो आज मेरे गांव में गलियां बिल्कुल साफ सुथरी, और कहीं भी आपको एक बूंद भी पानी बाहर गली में नहीं दिखाई देगा
1: जी।
2: वो सारा सीवरेज के होते हुए, चाहे वो डेरे हैं, चाहे वो गाँव है, चाहे कहीं चार घर हैं तो उनका भी सीवरेज है, कहीं 10 घर हैं वहां उनका भी सीवरेज है। सभी को सीवरेज की सुविधा दी गई है और गलियां साफ सुथरी बनाई गई हैं। तो गांव के लोग मेरे को इस बात को प्रशंसा भी करते हैं, ठीक है। मैंने गांव वाजी सब, मैंने एक ही टारगेट था कि सबका साथ सबका विकास, और जब सबका साथ सबका विकास करेंगे तो उनका विश्वास भी हम ही जीतेंगे। फिर हम कह सकते हैं सबका साथ
1: सबका विकास और सबका विश्वास,
2: और सबका विश्वास
1: जी। साधु सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, और उसके बाद हमारे प्रीतम जी भी आपसे प्रश्न करेंगे, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि गांव कराह किस बात से अच्छे से जाना जाए और कैसे उसको पहचाना जाए कि कराह एक ऐसा गांव है जो साफ सुथरा है, और आपके पहले कार्यकाल और दूसरे कार्यकाल में आपने क्या अलग काम किया, कृपया उसके बारे में भी बताएं, उसके बाद प्रीतम जी आपसे प्रश्न करेंगे जी।
2: पहले कार्यकाल में तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे गांव में,
3: नमस्कार,
1: आपका रुकना होगा, आपको रुकना होगा, एक कॉल आ रहा है हमारे पास। हेलो, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
3: हेलो, नांदोड़ी से बोल रहे हैं जी।
1: हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
3: नांदोड़ी से बोल रहे हैं जी।
1: हाँ जी, बताइए क्या नाम है आपका?
3: श्याम सुंदर जी,
1: हाँ जी बताइए क्या कहना चाहते हैं।
3: हेलो, ये जी एक हमारा खाड़ा है, 1 साल से बंद, 200 एकड़ भूमि है ना जी, बगैर उसके हो रही है जी, बगैर पानी के जी।
1: जी प्रीतम जी क्या कह रहे हैं ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। प्रीतम जी
3: हेलो,
4: भारत जी कह रहे हैं कि इनके गांव में कोई पानी का नाला होता है, जो होता है
1: जी,
4: उसमें पानी नहीं आ रहा और उसके नीचे 200 किले हैं,
3: 200 किले आगे है ना जी, बगैर पानी के, और सभी जगह धक्के खा लिए जी, कोई सुनवाई नहीं हो रही जी।
5: आपका विकास खंड कौन सा है
3: जी,
5: ब्लॉक कौन सा है आपका?
3: फतेहाबाद जिले में जी, नांदोड़ी।
5: नहीं ब्लॉक कौन सा है? फतेहाबाद तो जिला है ना, ब्लॉक
3: बुन्ना जी, ब्लॉक बुन्ना।
5: ब्लॉक बुन्ना,
3: हाँ जी।
5: ब्लॉक बुन्ना में जो विभाग का मामला है ना, संजक के किसी अधिकारी से मिले आप?
3: सुनवाई नहीं करी जी, कह रहे पॉलिटिकल दबाव है जी ऊपर से, कोई वो नहीं है सुनवाई है जी। मैं
5: तो ऐसा करना
1: गुरमित जी, आप इसको नोट करिए
3: जी, बीसी के पास भी गया था उन्होंने।
5: हाँ नहीं मैं कर लिया हूँ
1: जी जी,
5: आप मेरा नंबर नोट कीजिए।
1: आप नंबर इन, इन, इन है
5: 9 8। हेलो,
3: हाँ जी बताओ जी।
5: 9 8,
3: हाँ जी 9 8
5: 55 55 11 11 8 101
3: 8101, हाँ जी।
5: 95 551 18 101
1: जी। गुरविंदर जी बताइए, टाइम हमारा निकल रहा है, आप बताइए।
5: किशनपुर पे मुझे व्हाट्सएप कर,
3: चलो इसे व्हाट्सएप कर दूंगा सारे कागज
1: जी। जी आपकी बात हमने, हेलो आपकी बात हमने सुन ली और हम वीरेंद्र जी से भी डिस्कस करेंगे। आप वीरेंद्र इन गुरमिंदर जी को मैसेज कर दीजिएगा, आपकी बात का समाधान करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद कॉल करने के लिए जी। साधु सिंह जी आप जो बात कर रहे थे उसको पूरी कीजिए।
2: हाँ, जो सबसे जो पहले मेरा प्लान था, उस प्लान में मेरे को एक सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हमारे यहाँ 150 परिवार थे जो कि एक पंचायती जमीन में बैठे हुए थे
1: जी,
2: सन 1952 से 1952 से। तो उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के द्वारा, और सुप्रीम हाई कोर्ट ने उनको बेदखल कर दिया। उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बेदखल कर दिया कि इनसे जमीन, जो पंचायत की जमीन लगभग 400 एकड़ जमीन थी, 450 एकड़, उनको पहले पूर्वजों को उनको मिली थी सन 1952 में जब आए थे
1: वो रिलीज,
2: तो उनको भी यहां से बेदखल किया जाए, इनको घर भी उजाड़ दिया जाए और जमीन से बेदखल कर दिया जाए। तो ये सबसे बड़ी चुनौती मेरे लिए पहले ये थी कि इनको कैसे बसाया जाए, इनको छत कैसे दिलाई जाए। तो हरियाणा सरकार के सहयोग से और हमारे पंचायत विभाग जो है उनके सहयोग से उनको बसाने का काम किया। उनको जो जमीन थी वो तो पंचायत के अंडर आ गई, लेकिन उसके बाद समस्या रह गई थी उनको घर कैसे उनको दिलाए जाए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे भी इनको जमीन इनसे खाली करवा कर यहाँ से बिल्कुल इनको क्लीन किया जाए, साफ किया जाए। तो उसमें दौरान फिर मैंने सरकार के साथ जो तालमेल बिठा के, हमारे पंचायत विभाग पंचकूला से डायरेक्टर महोदय के साथ तालमेल बिठा के उस घरों को उनको पुनर्वास एक योजना तैयार की हरियाणा सरकार के द्वारा, भी इन परिवारों को 150 परिवारों को बसाया जाए यहाँ। तो उन्होंने पुनर्वास योजना के तहत 200-200 वर्ग गज के उनको प्लाट दिए और उनके नाम रजिस्ट्री करवाई गई ताकि वो यहाँ पर बसे रहे। ये सबसे बड़ी चुनौती थी जो इससे फिर छुटकारा मिला। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट भी नाराज हुआ कि आपने मेरा जो आदेश था उसकी आपने उल्लंघना की। तो इसमें ऑफिसर्स साहबान जैसे कि हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, उनको भी सुप्रीम कोर्ट की मतलब के एक ताड़ना सहनी, उनको सहनी पड़ी उनको। तो सरकार को भी इसमें बड़ा उनको सुनना पड़ा माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि आपने मेरा आदेश था कि इनको यहाँ से उजाड़ कर जमीन खाली करके पंचायत को हैंडओवर कीजिए, आपने मेरे आदेश को मतलब के दरकिनार करते हुए आपने इनको बसाने का काम किया। तो इसमें फिर सरकार ने एफिडेविट दिया कि हमारे से चलो गलती हुई, आगे समय ये गलती नहीं करेंगे। तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पंचायत क्या चाहती है, तो हमने यही कहा भी हम इनको बसाना चाहते हैं, 1952 से आए हैं तो ये कहाँ जाएंगे, तो ये इनके लिए तो छत तो चाहिए। तो उन्होंने हमने उसको रेजोल्यूशन डालकर जो भी दिया तो उनको बसाने का काम किया। सबसे बड़ी ये चुनौती थी जिसमें हम उस चुनौती को मतलब कि उसमें सफल हुए कि उन 150 परिवारों को हमने छत देने का काम किया।
1: आपने उनको बसाया भी और जो उनके पास जमीन थी वो भी पंचायत के लिए खाली कर दी गई। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ी बात यह होती है कि जैसे अभी हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात कर रहे थे, हम वो भुक्तभोगी हैं जिन्हें अपनी संस्कृति अपना घर छोड़ना पड़ा। आपने बहुत अच्छा काम किया। मुझे पता है कि अगर किसी का कोई घर छूटे वो कितना मुश्किल है और कितना तकलीफ देह है। आपने सबसे अच्छा मानवीय काम किया है, आपने उनको बसा के रखा और आपने उनके लिए आप खड़े हो गए। प्रीतम जी, आप साधु सिंह जी से कुछ पूछना चाहते हैं?
4: साधु सिंह जी नमस्कार, आपको अपना रेडियो चरखी दादरी पे सुना जा रहा है। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, आज जो सब कुछ आया हुआ है सोलर ऊर्जा की तरफ आपके गांव में, आपने सोलर पैनल के लिए आपके गांव वालों को कितना जागरूक किया, इसके बारे में बता दीजिए।
2: समय समय पर इन पे हम मीटिंग भी होती जाती है, अधिकारी गण भी आते हैं, वो उनको मतलब के समझा के भी जाते हैं कि जो जिसकी इनकम 1,80,000 से कम है उनको जो सुविधाएं मिल रही हैं उनके बारे में इनको बताया जाता है। और किसी ने 1 किलोवाट का लगाना है, 2 किलोवाट तक कितनी परसेंट छूट है और 3 किलोवाट तक कितना है, तो इसके बारे में समय समय पर अधिकारी गण भी आते हैं, तो सोलर ऊर्जा वाले वो भी आते हैं उनको समझाते हैं, लेकिन तकरीबन मोस्टली लोग लगाने लग गए हैं अपने घरों पर।
4: मेरा एक इसी में इससे सवाल जुड़ा था, आपकी पंचायत के पास इनकम अच्छी है क्योंकि आप बता रहे 400 एकड़ के करीब पंचायती जमीन है जो ठेके पे उठती होगी, तो इनकम होगी आपकी 400 किलो से। पहले एक कॉलर आया हुआ है उसकी बात सुन ली जाती
1: है।
4: हेलो हेलो
6: हेलो,
1: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
6: हेलो
4: बोल रहे जी, हेलो कौन बोल रहे जी,
1: आवाज नहीं आ रही उनकी।
4: हेलो,
1: चलिए अभी तो कॉल डिस्कनेक्ट हो गया जी,
4: लगता है बार जी वो उनका कनेक्शन हमसे कट गया है
1: जी। आप
4: तो मैं इसी के ऊपर जो आपकी जो सरकारी यानी कि सार्वजनिक स्थान है आपके गांव में जितने सार्वजनिक स्थान है क्या उनके ऊपर आपने सोलर पैनल लगवा चुके हो आप?
2: किस पे जी?
4: आप चौपाल हैं या ग्राम सचिवालय है, पंचायत कर रहे हैं क्या उनके?
2: एक दो जहां पे यूज होता है वहां पे लगा रखे।
1: चलिए हम
4: कार्यक्रम। और आपके गांव में एजुकेशन का कैसे है?
1: जी शिक्षा के बारे में पूछ रहे हैं।
4: शिक्षा के बारे में बताइए गांव में
1: जी, शिक्षा कैसी है, स्कूल कितने हैं और उनमें बच्चों की तादाद कितनी है और किस तरीके से पंचायत उनकी सुख सुविधा उनके ट्रांसपोर्ट के लिए काम करती है, खास करके लड़कियों के लिए युवतियों के लिए। जी
2: हमारे ये जो गांव का स्कूल है वो 8th तक स्कूल है और उसके बाद जो 10th तक का हमारे पास ही गांव के पास ही है, बिल्कुल हमारे गांव में तकरीबन पड़ता है। उसको पिछले साल है उसको प्लस टू तक कर दिया गया है
1: जी।
2: तो समय समय पर स्कूल में जाते भी हैं, देखते भी हैं, कोई वहां पर बच्चों के लिए किसी को इन्वर्टर की जरूरत हो इन्वर्टर लगाया जाता है, पंखों की कोई जो भी कोई वहां पर सुविधा की जरूरत पड़ती है समय समय पर हम उपलब्ध कराते हैं।
1: जो लड़कियां हैं खास करके उनके लिए क्या सुविधा आप उन स्कूलों में देते हैं ताकि उनकी जो पढ़ाई है वो कहीं रुक न जाए या किसी कारणवश उनकी सुरक्षा हेतु आप क्या कोई खास इंतजाम करते हैं या घर से गांव से दूसरे गांव तक ले जाने के लिए उनके लिए ट्रांसपोर्ट की कुछ सुविधा आप देते हैं?
2: ट्रांसपोर्ट की तकरीबन जरूरत नहीं, इतना दूर नहीं है हमारा जो स्कूल है, तकरीबन आधा किलोमीटर के लगभग है, आधा किलोमीटर से कम है
1: जी।
2: जो 12th तक स्कूल है और जो गांव का है वो तो गांव के बीच में ही है।
1: तो आधा किलोमीटर जो लड़के और लड़कियां पैदल जाती हैं स्कूल,
2: पैदल, हाँ पैदल भी जाते, जो पैदल ही है, इतना दूर दूर नहीं है जी, वो पैदल चली जाती
1: है। जी कॉल, हाँ हमारे पास एक और कॉल आया है।
4: हेलो
1: हेलो, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
6: हेलो,
1: हाँ जी ममता जी बोल रही हैं?
6: हेलो,
1: हाँ जी ममता जी बोल रही हैं?
6: हाँ जी,
1: हाँ जी ममता जी बोलिए, नमस्कार, क्या राम कहना राम, राम राम, क्या कहना चाहती हैं?
6: हाँ जी
1: बोलिए।
6: मैं ये कहना चाहती हूँ, सारी समस्याओं पे बात होगी, कोई जोड़ है घर में वहाँ पे गांव में, और महिलाओं के लिए क्या प्रबंध किया हुआ है इन्होंने, जानना चाहती हूँ महिलाओं के लिए क्या सुख सुविधा है वहाँ पे।
1: जी साधु सिंह जी बताइए, ममता जी सवाल कर रहे हैं।
4: उसी सवाल में मेरा भी एक छोटा सा सवाल जोड़ना चाह रहा हूँ।
1: तो पहले ममता जी के सवाल का जवाब, पहले ममता जी के सवाल का जवाब दीजिए, फिर हम पूछेंगे। जी आप ममता जी का सवाल का जवाब दीजिए साधु सिंह जी। जी
2: महिलाओं के लिए तो यही है, जो महिलाएं को किसी तरीके के किसी कोई, जैसे कि उनको कोई किस चीज के लिए पात्र है, मान लो कोई ये प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके लिए पात्र है, उसके लिए उनको उनका जो जो पात्र है उनकी उनको सहायता दी जाती है, उनको जो भी सरकार के द्वारा फॉर्म अप्लाई कराई जाते हैं वो फॉर्म हम उनको अप्लाई करवाते हैं, जो उनके जैसे 1,80,000 से इसकी इनकम कम है, किसी का फैमिली आईडी में कोई गलती से ऐसा कार्या है या राशन कार्ड कट गया है, उनका काम करवाने ऐसा काम करवाने का हम करवाते रहते हैं लेडीज के लिए, ऐसी कोई दिक्कत उनको परेशानी नहीं आनी पड़ती कि उनको आप कागजात उठाकर उनको शहर जाना पड़े, हम उनको नहीं जाने देते, हम उनको बोलते हैं कि हम मेरे पास आइए, आपको कोई जो भी है आपकी कोई दुख तकलीफ है उसको हम सॉल्व करेंगे। कुछ काम ऐसे होते हैं कि वो साथ के साथ हो जाते हैं, कुछ काम ऐसे हो जाते हैं कि उनको टाइम लगता है।
1: जी जी धन्यवाद ममता जी, आप बने रहिए। प्रीतम जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे?
4: मेरा सवाल था सरपंच साहब, कह रहे थे बच्चियों का स्कूल जो है 8 किलोमीटर दूर है, वो वहाँ पैदल जा रही हैं, तो मेरा सरपंच साहब से एक निवेदन है कि इनके पास
2: मीटर दूर नहीं है,
4: आधा किलोमीटर सर, आधा किलोमीटर,
2: हाँ आधा किलोमीटर,
4: 500 मीटर,
2: हाँ जी हाँ जी हाँ।
4: तो सर उन बच्चियों को आप अपनी तरफ से साइकिल दे सकते हो, ये एक आपका बहुत ही सराहनीय कार्य होगा, क्योंकि जहाँ सरकारी स्कूल में बच्चियां जा रही है वो जो गरीब परिवार से बच्चियां जा रही है, तो आप उनको साइकिल दे सकते हो, क्योंकि ये जो समय चल रहा है आगे बारिश का समय आ जाएगा, गर्मी होगी, तो इसमें बच्चों को जाने में सहूलियत होगी और इससे आपके गांव की शिक्षा स्तर सुधरेगा
1: जी।
2: इसके लिए हमने अभी ये बनाया, इसके लिए हमने मीटिंग की थी, बनाया है कि हम उन लड़कियों को जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है, जो गरीब परिवार से संबंध रखती है, उनको आने जाने के लिए साइकिल की सुविधा देने का कार्य हम इस वर्ष
1: जी। हमारे पास एक और कॉल आ रहा है साधु सिंह जी, आपको रुकना पड़ेगा। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं? हेलो,
4: लगता है भारत जी कनेक्शन कट गया उनका।
1: जी चलिए अभी हम इस कार्यक्रम के समापन की ओर है, हमारे पास 5 मिनट और है। साधु सिंह जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आप ग्राम सभा करते हैं उसमें महिलाओं का जो रोल है वो क्या है, और कितनी ग्राम सभा में आपके महिलाएं आती हैं?
2: हमारे जब ग्राम सभा करते हैं महिलाएं तकरीबन ज्यादातर, हमारे जब ग्राम सभा होती है मोस्टली ज्यादातर महिलाएं ही आती हैं।
1: कितनी?
2: हमने कई बार देखा है महिलाओं की गिनती ज्यादा होती है
1: जी। जो फैसला होता है उसमें महिलाओं का कितना रोल है, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर हम विकसित भारत की बात करते हैं 2047 तक, उसमें जितने हमारा योगदान है उतना महिलाओं का भी है, उनका महिलाओं का योगदान जो है वो कितना होता है आपकी ग्राम सभा में? एक कॉल आ रहा है, पहले कॉल देख लेते हैं। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं?
2: ग्राम सभा महिलाओं का
1: एक एक मिनट, एक कॉल है। हेलो जी, आवाज नहीं आ रही है, शायद कनेक्ट नहीं हो रहा, प्लीज आप अपनी बात पूरी करिए साधु सिंह जी, आप अपनी बात पूरी करिए। साधु सिंह जी आप अपनी बात पूरी करिए जो आप महिलाओं के बारे में बता रहे थे।
2: जी हाँ, महिलाओं आती महिलाओं महिलाएं का सहयोग पूरा होता है जहाँ कहीं भी उनकी जरूरत पड़ती उसी की बात कर रहा हूँ। जो महिलाएं का सहयोग आते हैं आप महिलाओं आते हैं उनका पूरा सहयोग रहता है। महिलाएं जैसे कोई यही उनको कहीं अगर मेडिकल में उनको जरूरत पड़ती है तो हमारे को बताती हैं, तो महिलाएं हमारा सहयोग भी करती हैं और घर घर तक ये बात भी पहुंचाती भी, अगर किसी गरीब कन्या की या किसी को मेडिकल सुविधा की जरूरत पड़े तो हम दिलवाने का काम पूरा करते हैं।
1: चलिए हम तो आपको शुभकामनाएं देते हैं और जब हम इस कार्यक्रम में आते हैं
4: जी
1: मैं वीरेंद्र जी, हाँ मैं आ रहा हूँ गुरविंदर जी की ओर, हमारा आपको बेस्ट विशेष है और क्योंकि आपने जो कार्य गांव में किया है हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कोशिश है कि हम आपकी बात को अलग अलग लोगों अलग अलग ग्राम वासियों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी प्रेरणा मिले और वो भी हर एक के लिए करे, महिलाओं के लिए करे, पुरुषों के लिए करे, गांव के लिए करे और यही हमारे इस कार्यक्रम का मकसद भी है। गुरविंदर जी आप पूछना कुछ चाह रहे हैं आप पूछिए।
5: सर जैसे एक जीपीडीपी आपने सुना होगा ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान,
2: हाँ जी
5: वो अपने पंचायत में बनता है?
2: बिल्कुल बनता है वो, जब जीपीडीपी वो बनाते हैं हर साल बनती है जी वो।
5: जैसे आपके जो पंचायत की सालाना इनकम कितनी है?
2: सालाना इनकम हमारी मेरे ख्याल से जी 35-40 लाख के करीब है, जो
5: जैसे
2: 30 की है,
5: जैसे 40 लाख आपके 40 लाख आपका अपने पास है ना, इनको आप और जो सरकार की स्कीमें हैं प्रोग्राम में उनको जोड़ के सभी जो कंपोनेंट हैं उसको 80 से मतलब अपने पाने कर सकते हैं, गांव वासियों को या ग्राम सभा से उनको अप्रूव करा के शिक्षा में खेती बाड़ी में बागवानी में और गांव के महिलाओं के रोजगार के लिए आप सभी चीजें अपने गाँव में कर सकते हैं। उसके लिए आपको गांव की जो बढ़िया एक अंग है उसकी जरूरत है, पंचायतों में जिनमें आमदन है, कई पंचायतों में तो बिल्कुल आमदन है लेकिन जहां पे आमदनी है उस आमदनी को खाली वो ही गलियों नालियों के ऊपर खर्च करना वो कोई मतलब सियानप वाली बात नहीं है। उसमें है कि आप गलियों नालियों से आगे निकल के ना जैसे गाँव में लाइब्रेरी बनाए, सीसीटीवी कैमरे लगवाए, ओपन जिम बनवाए और जो जैसे बच्चों के लिए जैसे फिजिकली जो उनको फिट रखने के लिए नसों से बचाने के लिए ऐसी खाने वाला जो हमारा भविष्य है वो किसी रोजगार में लाके और फॉरन से जो जाने का हमारा ट्रेंड चला है उसको रोका जा सके। हमारे बच्चे हैं जही हमारी हरियाणा की धरती के ऊपर रोजगार लेके और जहाँ भी बसे रहे इसके लिए आपकी जो पंचायत के जो तो साधन आपके पास है उसको आप उस पैसे को अपने गांव में भी और उनकी ओवरऑल जो डेवलपमेंट जैसे अभी जो हमारे सरकार का एक है कि 9 थीम है हमारे जो के ऊपर सरकार काम कर रही है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे तत्व विकास के थे उनके ऊपर काम कर रही है उसके लिए जो 9 थीम की है उसके ऊपर आप काम कीजिए। अभी एक पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स आपने पाई का नाम सुना होगा
2: जी,
5: पाई का नाम सुना है आपने? कल को आपके सेक्रेटरी साहब आएंगे उनको आपने पूछना कि पाई क्या है। पाई में क्या है कि उसमें जो ग्राम पंचायत का ओवरऑल स्कोर कार्ड है जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ता है ना
2: उसका
5: एक स्कोर कार्ड होता है जैसे कितने सहज में कितने नंबर है
2: उसमें
5: वो टीम मैच आपके पूरे गाँव का पंचायत का स्कोर कार्ड है उसपे ऊपर आप पैसा लगा के आप जो ग्राम पंचायत के लिए जो पुरस्कार रखे जाते हैं जैसे अभी मुख्यमंत्री जागृति पुरस्कार हम हरियाणा में एक चला अभी जो संपन्न होके हटा है काफी पंचायतों को वो अवार्ड मिले हैं जैसे आपका छोटा गांव है उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप ओवरऑल अपने गाँव की डेवलपमेंट कराते हैं तो अगले साल आप भी वो नाम जीत सकते हैं। इसके लिए आप अपने जो सेक्रेटरी है आपके दूसरे वार्ड मेंबर हैं जो ग्राम पंचायत के आपके साथी हैं और आपके ग्राम सभा के मेंबर हैं उनके सहयोग से आप अपने गांव की प्लानिंग अच्छे से करके और नाइन थीम में जो सस्टेनेबल गोल है उसके ऊपर ध्यान रख के जिस सेक्टर में आपका वीक है भी उसके ऊपर काम करो। पहले जिसमें आप बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं उस कंपोनेंट को पूरा सेचुरेट कर दो, उसको पूरा मतलब उसमें कोई कमी ना रखो, तो ऐसे आप नाम के आने वाले समय में हकदार हो सकते हैं। और बड़ा बढ़िया लगा आपसे बात
1: जी। तो जैसे जी गुरविंदर, गुरविंदर जी आपने आपने जो
5: नंबर तो आपके पास है
1: जी जी,
5: गुरविंदर ग्रामीण हमारे से जो भी ले सकते हो, धन्यवाद
1: गुरविंदर जी जो आपने सुझाव दिए। मुझे उम्मीद है कि साधु सिंह जी उन सुझावों पर भी जरूर बात करेंगे और आने वाले दिनों में जो कराह गांव है वो बहुत अच्छे से और सुधरेगा और अच्छा हो जाएगा और साफ सुथरा हो जाएगा। और हमें उम्मीद है कि जब हम कराह गांव जाएं तो हमें ये पता चले कि गांव में और बदलाव आया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया साधु सिंह जी।
5: जो कराह गांव है ना, कराह साहब है जी,
1: अच्छा
5: उसका नाम का थोड़ा हम करने जाते हैं, जहाँ पे चार पांच से आई हुई ना
1: जब
5: उसके, उसके लिए उसके गांव के साथ साहब लगता है।
1: चलो गुरविंदर जी जब जब जाएंगे इसको हम करेक्ट करके आएंगे। अभी फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। आपका साधु सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रीतम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी ओर से सभी को राम राम हरियाणा। आप प्रीतम जी अपनी ओर से राम राम कीजिए और कार्यक्रम का समापन करेंगे जी।
7: राम राम हरियाणा है। स्टाइल को भला कौन नहीं जानता। रफी के गीतों ने शम्मी को सितार बनाया तो शंकर जयकिशन के संगीत ने उनमें चाशनी पिरोई।
8: कोई मुझे जंगली कहे

गीता बाली का 1966 में निधन होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी 1969 में नीला देवी से की। आज शम्मी कपूर भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बिंदास अदाकारी हमारे दिलो दिमाग पर अभी भी जीवन

0: ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: रेडियो वितस्ता एफएम 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। आज की शाम हम सजाए हैं गजल के उस शहजादे पंकज उदास जी के नाम दर्द जज्बात मोहब्बत और अल्फाजों के सुरूर के साथ। पेश है श्याम गजल।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 7। आज के कार्यक्रम का शीर्षक है दोस्ती और रिश्ता। प्रस्तुत करेंगे आरजे किरनी। रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने। कार्यक्रम लिखा और निर्देशित किया आरजे किरनी ने।
2: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का रेट्रो हिट्स है दोस्ती और रिश्ते स्पेशल। दोस्तों और अपनों के रिश्ते ही जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। आज हम उन्हीं रिश्ते के अनमोल जज्बात को महसूस करेंगे। जब दोस्ती का रिश्ता मजबूत होता है तो फासले और वक्त सब बेकार होता है।

दोस्ती में होती है ईमानदारी, इसमें दुनियादारी नहीं होती। दोस्ती एक राज है जो खुलता नहीं, ये वो दीपक है जो बुझता नहीं।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 7। आज के कार्यक्रम का शीर्षक था दोस्ती और रिश्ता। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने। इस कार्यक्रम को लिखा, प्रस्तुत किया और निर्देशन दिया आरजे किरने ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

नहीं आना मुझे न बुलाना के मारेगा ताना जमाना। कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारेगा ताना जमाना।

ये सफर है फिल्मी गीतों का, तय करेंगे आप अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। नमस्कार, आदाब। शहर होते ही कोई हो गया रुखसत गले मिलकर, फसाने रात के कहती रही टूटी हुई चूड़ी।

दर्द जगता है अक्सर दिल के इस नाजुक कोने में, जहां कभी प्यार पलता था सिर्फ तुम्हारे लिए। जहां से तुम्हारा गुजर हुआ, वहां के रास्तों को तुमने महकाया, वहां की वीरानी को गुलजार किया, और वहां के फासलों को तुम्ही ने मिटाया। तुम्ही ने दर्द दिया और तुम्ही ने दवा। अब यहां हमारे तन्हाइयां पलती हैं, थाम लेती हैं रुस्वाइयां दामन, और तुम्हारी याद में ये आंखें अश्कबार रहती हैं। जगता है दर्द अक्सर इस दिल के कोने में।

फिर बरसता, भीग जाती ये खामोश चिनार, शायद बोल भी पड़ते, मुस्कुराते भी, और अपनी चुप्पी तोड़ लेते। मैं इनसे लिपटता, अब की बार इनके सायों में उम्र गुजारता, शायद गुजरे वो पल याद आते जो कभी भुलाए नहीं जाते। क्यों न बिस्तर की सिलवटों को ख्वाबों का पोशाक पहनाए, शायद फिर ये बादल टुकड़े टुकड़े हो जाए।

क्यों लगता है बरसों से शिनासाई है, ये मखमली मौसम बेताब है तुम्हारे पैरों की चुभन के लिए। बदलते रुत सरगोशियां करती हवाएं, तुम्हारे दुपट्टे की खुशबू अब एहसास है मेरा। क्या तुम्हें याद है तपती दोपहरी के दामन में यहां की फिजाओं को इन पानियों में हम बहाया करते थे, इन सूफियाना धुनों में आवाज से आवाज मिलाना, यही हमारी

ये मौसम है तुम्हारी यादों का, सावन का ही महीना था जब तुम लौट आए थे नंगे पांव, भीग चुके थे तुम्हारे कब कपाते होंठ, चेहरे की रौनक और सादगी से भरा कदे आदम जिस्म, धड़कने उदासी में लिपटी हुई थी, शायद अपना दर्द बयां कर

मेरी पनाहगाहों में जो तुम ठहरते ता उम्र, शायद तुम्हारी यादों का मौसम खिल उठता मौसमी बहार की तरह।

जिक्र तेरा ही होता है। इन पानियों में लहरें उठती तो हैं पर अक्स बिखरती नहीं, ये साहिल रहते हैं बेताब इन पानियों को छूने के लिए। यहां शाम होते होते मुरझा गए, अब ये भीगे मौसम और छिप गए चुप हो गए बुलबुल। इन काली खामोश घटाओं ने घेरा है सितारों को, चांद को, मेरी परछाई को और तुम्हारी मुस्कान को।

जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे थे FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक निरंतर रहते हैं। हम प्रसारण करते हैं अम्बाला छावनी से, और ये अम्बाला छावनी का पहला सामुदायिक रेडियो है जो आप सुनते हैं FM 90.0 MHz पर। नाम है रेडियो वितस्ता, और हम हैं आपके जिंदगी के हम सफर, आपके जीवन का प्रवाह। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मरहटा। आज के लिए बस इतना ही। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:02 और 24 सेकेंड। श्रोताओं, अब समय हो चला है FM 90.0 MHz पर आपके अपने पसंदीदा स्टेशन रेडियो वितस्ता के आज के प्रसारण को यहीं पर विराम देने का। पर जाने से पहले हर दिन की तरफ हम एक खास विषय पर बात करते हैं, और बात करने के साथ साथ आपको कुछ पंक्तियां भी सुनाते हैं हर रोज की तरह। तो आइए पहले आज का विषय। आज 23 जून का ये दिन भारत के इतिहास में एक बेहद भावुक और गौरवपूर्ण दिन है। आज का दिन महान राष्ट्रवादी और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के रूप में याद किया जाता है। साल 1953 में कश्मीर के मुद्दे पर एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे का नारा बुलंद करते हुए उन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया था। देश की अखंडता के लिए उनके इस संघर्ष और राष्ट्र प्रेम को रेडियो वितस्ता और समस्त देशवासियों सादर देशवासियों की ओर से और टीम रेडियो वितस्ता की ओर से सादर नमन करते हैं। उनकी पावन स्मृति को नमन करते हुए और आज के इस सफर को समेटते हुए पेश है वितस्ता के नाम ये विशेष समापन शायरी। शायरी की पंक्तियां जो है वो यूं है, कल कल बहती ये वितस्ता हर पल नया पैगाम देती है। कल कल बहती ये वितस्ता हर पल नया पैगाम देती है, देश के वीरों की शहादत को ये झुककर प्रणाम करती है। एक बार फिर पढ़ता हूं, कल कल बहती ये वितस्ता हर पल नया पैगाम देती है, देश के वीरों की शहादत को ये झुककर प्रणाम करती है। सजाकर यादों के दीप अब अंधेरी रात गुजरेंगे, सजाकर यादों के दीप अब अंधेरी रात गुजरेंगे, कल फिर होगी नई सुबह जब हम नए सुर संवारेंगे, कल फिर होगी नई सुबह जब हम नए सुर संवारेंगे। तो ये थी पंक्तियां आज आप सभी के नाम। और जाने से पहले आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल 24 जून 2026 बुधवार को हम आपके लिए कार्यक्रम लाए हैं, और सभा की शुरुआत होगी सुबह 5:58 पर वंदे मातरम से। हम शुरुआत करेंगे, लाएंगे आपके लिए एक प्रकाश प्रवाह। 6 बजे आप सुनेंगे भक्ति संगीत, और कल बुधवार है, कल आप सुनेंगे शब्द और गुरबानी भी। 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 1। कल का कार्यक्रम तैयार किया गया है पार्श्व गायक किशोर कुमार पर, और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे आरजे किरनी। 8:30 आप सुनेंगे सकारात्मक कहानियों का एपिसोड 18, फौजी देश का सम्मान। ये सकारात्मक कहानी आपके सामने पेश करेंगे नरेश शर्मा। 9:30 बॉलीवुड की सुनहरी यादें, और कल का कार्यक्रम हमने तैयार किया लक्ष्मीकांत प्यारे लाल पर, कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे भारत सोपोरी, और संगीत की सभा जारी रहेगी। 6 बजे आप सुनेंगे भक्ति संगीत, 6:30 आप सुनेंगे श्याम गजल, और 7 बजे होगा कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 9। कल का कार्यक्रम तैयार किया गया है आनंद बख्शी पर, और कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे आज किरनी, और 8:30 हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मरहटा। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का, और उम्मीद करते हैं कि आप अपना फीडबैक हमें जरूर भेजेंगे हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब समय है आपसे विदा लेने का, आज के इस प्रसारण को यहीं पर समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त और प्रस्तोता भारत सोपोरी। आप सब स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और सुनते रहिए FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता हर दिन सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक।
तो इन्हीं शब्दों के साथ अब लेते हैं आपसे आज्ञा, मिलते हैं कल सुबह 5:58 पर। तब तक के लिए आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।